पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं। बाबाज बुलंद, मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे। बाबाज बुलंद हैदर।

0: अभी उतनी आवाज नहीं आई, मैं फिर वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं तो जा।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: ढाडू सुठो
1: जीए FM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो जीए FM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो आज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां. हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
4: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत.
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे. सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे.
4: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे.
5: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो. असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे. वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920.
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली.
6: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल.
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद.
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी.
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी. ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे.
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली. वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230.
8: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी. छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो. सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो. मोबाइल नंबर 03002962435. एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली.
9: खुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली. डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी. औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन.
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी. यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो. निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे. निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी. वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842.
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
6: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
8: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
8: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
6: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
6: 0331252576
8: जी हा 2315525786
6: GFM रेडियो नेटवर्क
8: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: ब्रॉट टू यू बाय
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।

0: ते जीए पाकिस्तान। सॼो मुल्क जशन आज़ादी जे रंगनि में रंगजी वियो। सिंध समेत समूरे मुल्क में 79 आज़ादी जो ॾियारो क़ौमी जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो वियो। इस्लामाबाद में 31 तोपनि ऐं सूबाई राजधानी में 21 तोपनि जी सलामी, मुल्क सलामती ऐं खुशहाली लाइ ख़ुसूसी दुआऊं घुरियूं वियूं। नंढनि तोड़े वॾनि शहरनि में रैलियूं ऐं मेड़ाका, नौजवाननि, नारियुनि, ॿुढनि तोड़े ॿारनि पारां वतन सां मुहबत जो भरपूर इज़हार।
1: यादगार फतह जी इफ़्तिताही तकरीब दौरान अस्करी क़यादत जी सदर ऐं वज़ीर आज़म सां गॾु शहीदनि जे वारसनि सां ख़ुसूसी मुलाक़ात। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जे वारसनि जी साबिती क़दमी ऐं क़ुर्बानीनि खे ख़िराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जे वारसनि जे मथे ते शफ़क़त जो हथु रखंदे चयो त शहीद असांजे मथे जो ताज आहिनि।
0: पाकिस्तान खे आज़ाद थिए 79 साल थी विया। 21 साल खां पोइ आज़ादी जी सेंचुरी मल्हाईंदासीं। आज़ादी रुगो सरज़मीन हासिल करण जो नालो न, पर पाकिस्तान जे माण्हुनि सां हक़नि जो वाइदो हो। उन्हनि इलाइक़नि ऐं रियासतुनि सां वाइदो हो जिन पाकिस्तान सां गॾजण जो फ़ैसिलो कयो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी जो जशन आज़ादी जे मौके ते वीडियो पैगाम। बिलावल चयो त आइन में लिखियल वाइदे खे बार बार वरजाईंदा बि आहियूं, पर सदाई निभाईंदा न आहियूं। नौजवाननि खे इज़त जो रोज़गार मिले, मिनत जी कमाई सां घर हले ऐं मोट जो एतराम थिए। हू चाहिनि था त हर इलाइक़े खे पाकिस्तान जी तरक़ी में पंहिंजो हिसो मिले।
1: सिंध में सूबे जी का ॻाल्हि नई न आहे। सिंध असेंबली उन ख़िलाफ़ केतिरा ई भेरा ठहराउ मंज़ूर करे चुकी आहे। सिंध विरहाइण जूं ॻाल्हियूं कंदड़ पाण में विढ़ी पवनि था। सिंध धरतीअ जो पाणी सूबे खे नुक़सान पहुचाइण न ॾींदो। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी मज़ारे काए ते मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो त जेकॾहिं कंहिंखे सूबे बाबति एडवेंचर करणो आहे त सिंध असेंबली में 2-3 जी अक्सरियत सां ठहराउ मंज़ूर कराए। जीडीए ऐं फंक्शन लीग बि तारीख़ जो हिसो थी विया, हाणे अॻिते वधणु घुर्जे।
0: पेट्रोल पंप मालिकनि जो मुतालबो मंज़ूर। हुकूमत पेट्रोलियम डीलर जो फी लीटर मार्जन 1.34 रुपया वधाए छॾियो। डीलर जे मार्जन में वाध खां पोइ 9.98 रुपया फी थी वियो। नाड़े वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जे सदारत हेठि ईसीसी जे इजलास में पेट्रोलियम डिवीज़न नज़रसानी समरी पेश कई। पेट्रोलियम डीलर्स पारां फ़ैसिले जी आजियां।
1: थर घुमण लाइ वयल सयान जे ॿिनि मोटरसाइकिलनि में ख़ौफ़नाक टकर। मलकाणी शरीफ़ वासी 4 ॼणा अजल जो शिकार। हिकु ज़ख़्मी मिठीअ वेझो सनाया सर वटि। हादसे में रेवश कुली, महिराण, शोभा

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
8: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

صرف غلام کیے باشم

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाए।
3: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
4: ट्रंप जो आपने हरमुज के जल्द अमेरिकी इलाको करार देण जो ऐलान न्यूयॉर्क में तकरीबन के खिताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है ईरान मुआशी दबाव विझी जंग खत्म करण ते मजबूत कंदासीं। जल्द आबन हरमुज के अमेरिकी इलाको करार देण जो भी ऐलान कंदस व्हाइट हाउस आबन हरमुज बाबत सदर ट्रंप जे बयान के मजाक करार ॾेई छॾियो। अमेरिका सां ॻाल्हियुनि जी बहालीअ जो फ़ैसिलो नाहे कयो। पैगामनि ॾे वठि ॻाल्हियूं नाहिनि हूंदियूं। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राक्ची चयो आहे त इस्लामाबाद मुफ़ाहमतनामे में जंग बंदी न पर जंग जे ख़ात्मे जी ॻाल्हि थी हुई, जंहिंजे अमेरिका भञकड़ी कई। अमेरिका सां राब्तनि लाइ पहिरें वारा राब्ता हाणे मुयसर न रहिया आहिनि। तेहरान अमेरिका सां राब्तनि लाइ वक़्ती रस्तो तयार करे रही आहे, जेको बाद में मुस्तक़िल रस्तो बि थी सघे थो।

यमन के शहर अल मकाती ते होसिन जो हमलो बिन सिक्योरिटी अहलकारनि समेत छह जणा मारिजी विया। यमनी हुकूमत जे फौजी उहिदेदार चयो आहे त होसिन बागेन बंदरगाह ते सामान लाहींदड़ बहरी बेड़न ते पंज मिज़ाइल फायर कया। बिन जहाज़नि खे बाहि लॻी वई। हमले में बिन सिक्योरिटी अहलकारनि समेत छह जणा मारिजी विया।

0: ऐं सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि औरत समेत ॿिन ॼणनि जा लाश हथ छाछरो वेझो घर जे कमरे मां औरत कविता मेघवाल जो फाहो लॻल लाश मिलियो आहे। सखरबेरा जी सिटी पॉइंट बाईपास वटां खीरथर केनाल मां नामालूम शख़्स जो लाश हथायो आहे। सुञाणप न थी सघी आहे। इस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे।
1: जबरदस्त हवा रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का
2: साइबान जो लामा पैदावार बढ़ाए फसल चमकाए मुनफरिद फार्मूलो सरायत पजीर असर सुंडिन जे लाए मौत जो परवानो सारिन जी बढ़ाए पैदावार मुनाफो मिले शानदार सुंड
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
9: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
10: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
10: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
10: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 0331252576।
10: जी हा, 2315525786।
9: GFM रेडियो नेटवर्क,
10: सिंध जो आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: चलना। एक चूटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: मम्मी, तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।

मुलाकात में जी गाल कई हुई जैं जी अमेरिका भंकड़ी कई अमेरिका सा राब्तन लाए पहरे वारा राब्ता हाने मुअसर न रहा आहन तेहरान अमेरिका सा राब्तन लाए वक्ती रस्तो तैयार करे रहो आहे जेको बाद में मुस्तकिल रस्तो भी थी सके तो यमन के शहर अलमखाते हौसियन जो हमलो बिन सिक्योरिटी अहलकारन समेत छह जणा मारजी विया यमनी हुकूमत के फौजी अहदेदार हौसी बागिन बंदरगाह ते सामान लाहिंदड़ बहरी बेड़न ते पंज मिसाइल फायर कया बिन जहाजन के बाह लगी वही हमले में बिन सिक्योरिटी अहलकारन समेत छह जणा मारजी विया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पारां अगोणन फौजियुनि जे मान मियाजियाणो मुल्की दिफ़ा लाइ कयल ख़िदमतनि जी साराह ISPR मौजूद फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर पारां डि॒नल आजियाणे में अगोणे फौजियुनि जे सरबराहनि समेत वॾे अंग में रिटायर्ड आफ़ीसर ऐं जवान शरीक थिया फील्ड मार्शल मुल्की दिफ़ा लाइ कयल ख़िदमतनि ते संदन वाखाण कई अगोणे फौजियुनि पारां बे अस्करी क़यादत ते एतमाद जो इज़हार क़ौमी इतिहाद अमुन ऐं ख़ुशहाली लाइ किरदार जारी रखण वारे अज़म जो वर्जाउ

0: नसीराबाद जे मुख़्तलिफ़ शाखनि में ज़रई पाणी जी खोट, बिजली जी लोड शेडिंग ऐं बदमनी ख़िलाफ़ जे यू आई जो एहतजाज। काठिया मोहला खां रैली कढी अर्थर शाख जे पुल वटि धरणो हयो वियो। अॻवाणनि चयो त ज़रई पाणीअ जी खोट सबबि आबादगार परेशान आहिनि। शहरनि खां फुरूं बि रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। आबादगारनि खे पाणी ॾेई अमुन बहाल करायो वञे। बलूचिस्तान जे शहर ओस्ता मोहम्मद में आबादगारनि जो पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। आपाशी आफ़िस आलू धरणो ऐं रोमाइनर जे आबादगारनि पाणीअ खोट ख़िलाफ़ एहतजाज करे धरणो हयो। आबादगारनि चयो आहे त शाखनि में पाणी खोट सबबि फसल सुकी रहिया आहिनि। पाणी फराम करे ज़राइत ऐं ज़िंदगियूं बचायूं वञनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि औरत समेत टिन ॼणनि जा लाश हथ कया। छाछरो वेझो घर जे कमरे मां औरत कविता मेघवार जो फाओ लॻल लाश मिलियो। सखर जे सिटी प्वाइंट बाईपास वटां कीर्तर केनाल मां नामालूम शख़्स जो लाश हथ आयो आहे, जंहिंजी सुञाणप न थी सघी आहे। सखर बैराज मां बि हिकु ॼणे जो लाश मिलियो आहे, सुञाणप न थी सघी। पीर जो ॻोठु भरिसां ॻोठाणनि जो पुलिस जे ज़्यादतियुनि ख़िलाफ़ एहतजाज। ॻोठु राहूजा जा रहवासियुनि पारां कूड़ा केस दाख़िल करण ऐं घरनि ते पुलिस चढ़ाई ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। ॻोठाणनि मौजूदु पुलिस शागिर्दनि खे बि कूड़नि केसनि में नामज़द कयो आहे। ॻोठ ते चढ़ाई करे फुरलुट बि कई आहे, इंसाफ़ कयो वञे। इंडोनेशिया जे साहिली इलाइक़े में ज़िलज़िलो शिदत 7.7 रिकॉर्ड। ज़िलज़िले सबबि केतिरियूं ई इमारतूं पट, 20 ॼणा फोत, केतिरा ई ज़ख़्मी। इंडोनेशियाई साहिल वेझो आयल ज़िलज़िले सबबि रहवासियुनि घरनि खां ॿाहिरि निकिरी आया। किरियल इमारतनि जे मलबे में दॿियल माण्हुनि खे ॿाहिरि कढण लाइ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं GAFM ETH नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
6: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230।
7: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
8: खुशखबरी। अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी याद रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301343842।
9: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
2: सुनते रहो GFM 90.4।
10: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
7: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
10: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
7: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
10: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
10: 0331252578
7: जी हा 2315257786
10: GFM रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-43-842।
5: खुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अघ मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
7: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
1: 90.4। पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 03125252786।
3: जी हा 2315525786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: दोस्तों ही बैत पढ़ियो मूं सऊदी ताइफ शहर खां अब्दुल्ला अरिंद जो जेको मुझो भा है अल्लाह साईं उनके खुश रखे ऐं सऊदी अरब खां खास फरमाइश जेके अब्दुल्ला अरिंद जा दोस्त आहिनि परदेसी अब्दुल सतार छुटो खालिद भुट्टो ऐं माजिद सिंधी जी खास फरमाइश
1: हो मुझा जे है प्यार विसारे तमाम न्या हुन खे
0: ये गुल ढोलक वाला उसका नज़ाकत अर्शद बंजारा ओ

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।

0: अगोणे वज़ीर आज़म नून लीग जे सदर नवाज शरीफ जी सदारत हेठ पार्टी अॻवाननि जो मरी महम इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ बि शरीक। आज़ाद कश्मीर में चूंडनि में कामयाबी बाद हुकूमत साज़ी समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ग़ौर। ज़रियनि जो चवणु आहे त इजलास दौरान मुल्क जे मुआशी ऐं सियासी सूरतहाल जो बि जाइज़ो वरितो वियो।
1: After we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: ट्रंप जो आबना हर्मुज खे जल्द अमेरिकी इलाइक़ो करार ॾियण जो ऐलान। न्यूयॉर्क में तकरीब खे ख़िताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान ते मुआशी दबाउ विझी जंग ख़तम करण ते मजबूर कंदासीं। जल्द आबना हर्मुज खे अमेरिकी इलाइक़ो करार ॾियण जो बि ऐलान कंदसि। व्हाइट हाउस आबना हर्मुज बाबति सदर ट्रंप जे बयान खे मज़ाक करार ॾेई छॾियो। अमेरिका सां ॻाल्हियुनि जी बहालीअ जो फ़ैसिलो नाहे कयो। पैगामनि जी ॾे वटि ॻाल्हियूं नाहिनि हूंदियूं। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची चयो आहे त इस्लामाबाद मुफ़ाहिमत नामे में जंग बंदी न पर जंग जे ख़ात्मे जी ॻाल्हि थी हुई, जंहिंजे अमेरिका भञकड़ी कई। अमेरिका सां राब्तनि लाइ पहिरें वारा राब्ता हाणे मुयसरु न रहिया आहिनि। तेहरान अमेरिका सां राब्तनि लाइ वक़्ती रस्तो तयारु करे रहियो आहे, जेको बाद में मुस्तक़िल रस्तो बि थी सघे थो। यमन जे शहर अलमका ते हुसिन जो हमिलो। ॿिन सिक्योरिटी अहलकारनि समेत 6 ॼणा मारिजी विया। यमनी हुकूमत जी फ़ौजी उहिदेदार चयो आहे त हुसी बागेन बंदरगाह ते सामान लाहींदड़ बहरी ॿेड़नि ते 5 मिज़ाइल फायर कया। ॿिन जहाज़नि खे बाहि लॻी वई। हमले में ॿिन सिक्योरिटी अहलकारनि समेत 6 ॼणा मारिजी विया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पारां अॻोणनि फ़ौजियुनि जे मान व्याजी आणे मुल्की दिफ़ा लाइ कयल ख़िदमतनि जी साराह। SPR मौजूदु फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर पारां ॾिनल आजियाणे में अॻूणनि फ़ौजी सरबराहनि समेत वॾे अंग में रिटायर्ड आफ़ीसर ऐं जवान शरीक कया। फील्ड मार्शल मुल्की दिफ़ा लाइ कयल ख़िदमतनि ते संदन वाखाण कई। अॻूणनि फ़ौजियुनि पारां अस्करी क़यादत ते इतमाद जो इज़हार। क़ौमी इतिहाद अमुन ऐं ख़ुशहालीअ लाइ किरदार जारी रखण वारे अज़म जो वर्जाउ।

एनडीएमए चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक जी वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। एनडीएमए चेयरमैन पारा वजीर आजम के मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ब्रीफिंग। वजीर आजम पारा एनडीएमए के सूबन से सहकार करने की हिदायत। शहबाज शरीफ चयो तो मुतासिरन के सहूलतू फराहम कयूं वन।

कराची जी अदालत में नौजवान व्यापारी मीर रजा के सीबुधड़ी संदस भाईवार मोहम्मद अहमद जी अबूरी जमानत में वाद जांच में सहकार करण की हिदायत वकील जबरान नासिर चयो आहे त पुलिस इन वक्त ताई मोहम्मद अहमद के जवाबदार नामजद नाहे कयो जवाबदार नामजद करण खां सवाइ गिरफ्तारी मुमकिन नाहे वाके वारी हंध तां कुझ वधीक शाहिदूं मिलियूं आहिनि मीर रज़ा जे क़तल ख़िलाफ़ वालिद न पर नौजवान एहतजाज करे रहिया आहिनि मीर रज़ा जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी चाहिनि था।

0: नसीराबाद जे मुख्तलिफ शाखन में ज़रई पाणी जी खोट, बिजली जी लोड शेडिंग ऐं बदमनी ख़िलाफ़ जेयूआई जो एहतजाज। काठिया मोहला खां रैली कढी अर्थर शाख जे पुल वटि धरणो हयो वियो। अॻवाणनि चयो त ज़रई पाणीअ जी खोट सबबि आबादगार परेशान आहिनि। शहरनि खां फुरू बि रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। आबादगारनि खे पाणी ॾेई अमुन बहाल करायो वञे। बलूचिस्तान जे शहर औस्ता मोहम्मद में आबादगारनि जो पाणीअ कोर्ट ख़िलाफ़ एहतजाज। आपाशी आफ़ीस आॾो धरणो हेनरो माइनर जे आबादगारनि पाणीअ कोर्ट ख़िलाफ़ एहतजाज करे धरणो हयो। आबादगारनि चयो आहे त शाखनि में पाणी खोट सबबि फसल सुकी रहिया आहिनि। पाणी फराहम करे ज़राइत ऐं ज़िंदगियूं बचायूं वञनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में औरत समेत टिनि ॼणनि जा लाश हथ छाछरो वेझो घर जे कमरे मां औरत कविता मेघवाड़ जो फाहो लॻल लाश मिलियो। सखर जे सिटी पॉइंट बाईपास वटां खीथर केनाल मां नामालूम शख़्स जो लाश हथ आयो। सुञाणप न थी सघी। सखर बैराज मां बि हिकु ॼणे जो लाश मिलियो। सखर में गुज़िरियल ॾींहुं हादसे में फोत थियल नींगर जो लाश रखी एहतजाज। नींगर हसन अली जे वारसन प्रेस क्लब आॾो लाश रखी एहतजाज कयो। गुज़ारिन मौजूद पुलिस हादसे जे ज़िमेवारनि खे अञा ताईं गिरफ़्तार नाहे कयो। ज़िमेवार गिरफ़्तार न थिया त एहतजाज जो सिलसिलो जारी रहंदो। पीर जो ॻोठ भरिसां ॻोठाणनि जो पुलिस जे ज़्यादतियुनि खे
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह मोहब्बत ओ यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
4: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अवांजे पंहिंजे शहर माटली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713900392।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
8: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
9: खुशखबरी, अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी याद रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
8: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
8: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
6: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
6: 0331252578
8: जी हा 2315525786
6: GFM रेडियो नेटवर्क
8: सिंध जो आवाज़

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
1: खुशखबरी साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
3: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि हीअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ ख़ुशि ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतुनि जी मख़सूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-3843-842।
7: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
8: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03132525786।
5: जी हा 2315525786।
8: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर माथली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती गनामस्ती। हाँ जी, तो आपकी सिद्धराव के साथ मौजूद मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे, अपने होने का एहसास दिलाते जाएंगे, आप जनता मुझे पता होना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो काइंडली ऐसा किया करें, हमारी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें, ठीक है, पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और उसके अलावा अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें पैनल पर भी ज्वाइन करेंगे और आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन करेंगे। अच्छा, मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया, यानी कि प्रोग्राम का टॉपिक ये है कि आप लोग ज्यादातर जो है ना, कुछ लोगों की आदत होती है एक ही वर्ड को बार बार बोलते रहते हैं, लगातार बोलते रहते हैं। अब जैसे आजकल मेरी ये आदत हो गई है कि मैं बार बार बोलती हूँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी कुछ भी हो, कोई भी बात चल रही हो, कितनी ही सीरियस बात क्यों ना चल रही, लेकिन मेरा हाँ जी खत्म नहीं हो रहा होता। तो बिल्कुल वैसे ही आप लोगों का भी एक कोई वर्ड होगा जो कि बहुत ज्यादा बोलना आप लोगों की आदत होगी, तो वो आज आप मुझे बताने वाले हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारे प्रोग्राम में रौनकें होती हैं। और उसके अलावा अगर आप अच्छा अच्छा गाना सुनना चाहते हैं, अच्छा अच्छा म्यूजिक कलेक्शन आपको पसंद है, तो आप हमें फरमाइश भी कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और यहाँ पर जो है ना, आप हमें ज्वाइन करते जाएंगे। आपके मैसेजेस तो बिल्कुल मुझे मिलते जा रहे हैं जो कि हम शामिल प्रोग्राम रखेंगे, लेकिन मैं क्या सोच रही थी, ये बात है बिल्कुल, अगर ऐसा वाला सीन हो जाता है ना, यानी कि एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि भाई हमें ना अगर स्पॉन्सर्ड नहीं होता तो मैं इतनी इतनी बातें करती, ये भी बोलती वो भी बोलती, ये भी बात ही हाँ बतानी आप लोगों को। लेकिन जब स्पॉन्सर्ड नहीं होता तो फिर मैं सोचती हूँ कि अब मैंने क्या बातें करी ये चीज जो है ना, ये थोड़ा सा मुझे परेशान कर देती है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। चले कोई बात नहीं, हम ऐसा करेंगे, आप लोगों के साथ बातें करेंगे। और पैनल पर यहाँ पर आपके मैसेजेस हैं जो कि आते जा रहे हैं, तो जी आते जाइए और आपको वेलकम कहते हैं। यहाँ पर सादिया अली हमें सबसे पहले ज्वाइन कर चुकी हैं। सादिया अली क्या कहती हैं, वालेकुम अस्सलाम एंड गुड आफ्टरनून, आप ही बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं। अब्दुल रशीद लाखेर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम, आपको वेलकम कहा जाता है। हिदायतुल अहमदानी, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। मीर बालाच बिरोही हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। और सादिया कहती है यहाँ पे ये पोइट्री है, कुछ लोग जिंदगी से चले तो जाते हैं मगर दिल से कभी नहीं जाते, उनकी आवाज उनका अक्स हमेशा दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और चाचा खालिद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बेटा से जो, हाउ आर यू, हो फाइन बेटा, यस आई एम फाइन, आप बताएं कैसे हैं। और उनका अलावा निदड़ी भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद कहती है तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हम हैं हम, वालेकुम अस्सलाम समझने में थोड़ा टाइम लग गया, वेलकम कहती है आपको भी हमारी प्यारी निदड़ी। और सादिया कहती है टॉपिक मेरी आदत है वर्ड आप ही बोलते हैं, लड़कों के साथ बैठे भाइयों के साथ बैठे तभी आप ही बोलेंगे। उनका अलावा हजार खान जतो हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। उनका अलावा जी निदड़ी कहती है टॉपिक मैं तो तौबा ज्यादा बोलती हूँ, बात बात पर तौबा तौबा करती हूँ, क्या बात है, ये वैसी अच्छी बात है, तौबा तौबा किया करें तेरा तौबा तौबा। अच्छा उन्हें का अलावा कहते पूरा वर्ड हाय अल्लाह तौबा, चले ये ठीक है ये ठीक है। उन्हें का अलावा हिदायतुल्लाह क्या कहते हैं, अब तो मैं दोबारा ब्लैक हो जाऊंगा, चलते का नाम मस्ती नहीं नहीं आप टेंशन ना ले, आपके गोरेपन का बंदोबस्त कर देंगे हम। और हमदुल्ला मलाखेल कहते हैं अपना हर काम ईमानदारी और नफासत से करें, क्योंकि आपका काम सिर्फ आपका मुस्तकबिल ही नहीं बल्कि आपकी शख्सियत भी बनाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। और ऐसे ही आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाएंगे और अपने होने का एहसास दिलाते जाएंगे। मेरे पास आप लोगों के मैसेजेस हैं।

तो बात बिल्कुल ऐसी हो ही जाती है कि कई मरतबा हम किसी की बात पर यकीन नहीं करते और यकीन वैसे करना भी नहीं चाहिए, ना तो इंसान फरिश्ते हैं ना ही आजकल दौर ऐसा है कि भाई जान हर किसी पर यकीन किया जाए।

क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपने एंजॉय किया। और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद है जनाब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करते जा रहे हैं 888 और फेसबुक पर आपका हमारा साथ मौजूद रहेगा। और इसी के साथ साथ पूरी पूरी 3 बजे तक मैं आपके साथ हूँ जनाब। और यहाँ पर हजार खंड जतोई भाई कहते हैं आप भी अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, अगर हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। अल्लाह जय विदा हिदायत अल्लाह, आपने गाने की फरमाइश कर दी ॾिसूं था बाबा ॾिसूं था। और निदड़ी तव्हां गाने जी फरमाइश कई आहे, मां हलाइण जी कोशिश कयां थी। दर्दे दिल आ चुकी है, दर्दे दिल कहती है। अस्सलाम वालेकुम चंदा जानी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? चाचा कहते हैं आप हमसे बातें करें ना, बातें करनी तो आई हूँ, मेरा जरा मूड नहीं था बस फिर सोचा चलें जी कर ही लेते हैं। अच्छा निकाला हुआ हिदायत अल्लाह कहते हैं टॉपिक आंसर सिद्रा गाना सुना दें, ये लफ्ज कुछ ज्यादा बोलता हूँ मैं, नहीं प्रोग्राम में नहीं, प्रोग्राम के अलावा भी लोगों के साथ बात करते हैं तो कौन सा लफ्ज जो कि आप ज्यादा बहुत ज्यादा बोलते हैं।

मेरी बेटी बेटी जरा याद आ गई, आजकल आप लोगों ने नोटिस करा AI के गाने कितनी अच्छी अच्छी बनना स्टार्ट हो चुके यानी कि ये जो बात पहले की जाती थी ना कि AI इंसानों की नौकरियां खा जाएगा, मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि AI ने तो सिंगर्स की नौकरी बिल्कुल खा ली है। आजकल तो एड्स भी सारे AI से बन रहे हैं, तो देखें भाई वो इसीलिए कहते ना AI सीख ले, आगे बहुत आपको काम आएगा। तो AI के गानों से जरा बात याद आ गई कि AI के गाने जो आजकल इतने अच्छे अच्छे बन रहे हैं, तो एक ऐसा AI का गाना आपने मुझे जरा बताना है जो कि आजकल आप सुन रहे हैं, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको यकीन नहीं आता कि ये AI का बना हुआ गाना है, क्योंकि बहुत गाने ऐसे आ चुके हैं मार्केट में जो मैं सुनकर भाई मैं तो ऐसे सोचती हूँ कि ये AI का गाना बना हुआ है, इतना अच्छा इतना सुरीला कि सुनकर बस मजा ही आ जाता है। तो जल्दी से मुझे बताएं कोई ऐसा गाना जो आपको लगता है कि ये तो भाई AI का नहीं, लेकिन हाँ वो AI का होता है। तो भाई ये आजकल सिंगर्स की नौकरियां भी जरा खतरे में आगे पता नहीं और क्या क्या होने वाला है। इसीलिए भाई पढ़ी लिखी ISYS बने, अपना फ्यूचर जो है ना वो सिक्योर कर ले। और इसके अलावा अब्दुल्ला अली हमारे साथ कहते हैं अखरी चौधरी से अली गुलाब शर और अब्दुल्ला शर, बाजी आपका प्रोग्राम अच्छा है, थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला, आपको वेलकम कहते हैं। आपका ये जो सिटी है ना ये मुझे सही से नहीं इसका नाम आ रहा, मैंने सुना ही पहली मरतबा, तो आपको वेलकम कहते हैं। उनका अलावा दर्दे दिल कहती है हाँ अमेजिंग सॉन्ग एंजॉय करें, और दर्दे दिल कहती हैं कि और अलीजा शो सुन रही है टॉपिक अलीजा ज्यादा, हाँ सही सही बोलती है, हाँ सही सही ओके हजार भाई कहते हैं जी हाँ जी टॉपिक में ज्यादा बोलता हूँ और कभी कभी ओ माय गॉड भी बोलता हूँ, ओ माय गॉड ये जो भी लोग बोलते हैं मुझे बड़ी हंसी आती है पता नहीं क्यों।

और हजार रुपए कहते रियली एआई मेरा काम भी खा जाएगा, लग तो ऐसा रहा है। आजकल देखें लोग ज्यादा कंटेंट जो है ना वो ऐसा बना रहे हैं कि मुझे ऐसा होता ना, पहले मैं सोचती थी कि भी लोग इतनी मेहनत करें वीडियो बनाने में, एक वीडियो बनाने में इतना मुश्किल काम होता था, लोग रिकॉर्डिंग करते थे, अपनी वीडियो बनाते थे, ऑडियो देते थे और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर एडिट करते थे। लेकिन अब ऐसा है कि भाई एआई को दे दें वो सारा काम आपको करके दे देगा। और अब तो ऐसा है कि शॉर्ट्स भी आपने देखे होंगे बस सिर्फ एआई के ही चल रहे हैं, मैं बैगन उड़े, मैं गोभी उड़े, सारा बस यही चल रहा है, वीड मेरा पूरा भरा हुआ होता है। तो ये सुन सुन कर देख देख कर ऐसा लग रहा है कि भाई एआई ने इतना जो है ना वो हमारे लोगों के जहनों पर सवार हो चुका है कि बस उठते बैठते हमारे घर में तो यही चलता है, मैं एआई हूँ रे, मैं गोभी हूँ रे, मैं बैंगन हूँ रे, और ये पता नहीं कौन कौन सब्जियों के ये शॉर्ट्स बनाकर जो है ना ये बस चल रहे हैं आजकल। तो ये चीज देखकर अजीब ही लगता है और हम सोचते हैं भाई ये दुनिया कहाँ जा रही है। तो अपना टाइम जो है ना वो ऐसी चीजों में जरा मत ही वेस्ट किया करें, बस आप ऐसी रील्स देखते हैं बैठकर। मैंने तो ऐसे सारे कंटेंट को जो है ना वो हाइड ही कर दिया है, मेरे पास इस तरह की कोई रील नहीं आती, लेकिन मेरे घर वाले जो है ना वो सारा दिन देखते रहते हैं। और ये वही बात आ जाती है, जो लोग जितना कंटेंट देखेंगे तो उनको वैसा ही जो है ना वो ज्यादा कंटेंट बनाएंगे लोग, यानी कि उनको व्यूज मिलते हैं तो वो ज्यादा बनाएंगे। अगर इस तरह का कंटेंट ज्यादा लोग देखेंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा बनेगा। तो ऐसा है कि आप देखना जरा बंद करें ताकि लोगों को ये चीज समझ आ जाए कि भाई कौन सा कंटेंट बनाना है और कौन सा नहीं बनाना। भाई हाँ, क्या पता एआई आरजीबी बन जाए अब तो कुछ भी हो सकता है, मैं कहती हूँ कुछ भी हो सकता है।

बात बिल्कुल मुझे लगती है कि सिंगर्स का तो भाई गयो, सिंगर्स तो गयो, क्योंकि इतने अच्छे से आए के गाने बन रहे ना, मैं सुनकर एक दो गाने में आपको सुनाऊंगी प्रोग्राम में, आप सुनिएगा आपको मजे आएंगे, आप बोलेंगे भाई ये एआई जो गानो हुआ कहा लगे दो ही को ना, पर हाँ बिल्कुल एआई जो गानो हो। अच्छा किशोर भाई कहते आओ मीम लवर आए हाँ जेको मीम पसंद अच्छे थो हूँ अप्लाई कर दो आया। सेम सेम अब्दुल्ला भाई कहते हैं बाजी मुझे एक अर्ज नहीं नहीं इंडियन गाने भाई अब नहीं लगाते हैं तो माजरत कर देते हैं। सादिया कहती है आप ही पांच उंगलियां बराबर नहीं है, आप मुझ पर यकीन कर सकती हैं। भाई मैं किसी के ऊपर यकीन नहीं करती और मुझे पता है पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, हाथ पूरा आप बंद कर देना तो पांच उंगलियां बराबर हो जाएंगी। तो मैं इस चीज के ऊपर बिलीव करती हूँ, पांच उंगलियां जो है ना वो एक हो जाती है जब हम मुट्ठी बंद करते हैं।

0: नहीं मैं होशियार हूँ, मैंने बंदोबस्त कर लिया हुआ है अपना, मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप अपना सोचिए जरा। वैसे वो वाली बात आ जाती है ना कि मैं लेडीज हूँ, मुझे फ्यूचर की ज्यादा टेंशन नहीं करनी चाहिए। समझ गए होंगे, तो लेडीज लोग को ज्यादा फ्यूचर की टेंशन नहीं करनी चाहिए, समझ रहे हैं।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज,
2: ब्रॉट टू यू बाय
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी जो मान बधाई।
4: नवाज भी शरीक आजाद कश्मीर में चूंडन में कामयाबी बाद हुकूमत साजी समेत मुख्तलिफ मामलन ते गौर, जरियन जो चवण आए ते इजलास दौरान मुल्क जी मुआशी ए सियासी सूरत हाल जो भी जायजो वरतो वयो।

0: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade.
1: New York میں تقریب کے خطاب کندے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چواہے تے ایران تے معاشی دباؤ بھی جی جنگ ختم کرن تے مجبور کنداسی جلد ابنا ہرمز کے امریکی علاقو قرار دین جو اعلان کندس وائٹ ہاؤس ابنا ہرمز بابت صدر ٹرمپ جے بیان کے مذاق قرار دے چھڈیو अमेरिका सां ॻाल्हियुनि जी बहालीअ जो फ़ैसिलो नाहे कयो पैगामनि जी ॾे वटि ॻाल्हियूं नाहिनि हूंदियूं ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास सिराकची चयो आहे त इस्लामाबाद मुफ़ाहिमतनामे में जंग बंदी न पर जंग जे ख़ात्मे जी ॻाल्हि थी हुई जंहिंजी अमेरिका भञकड़ी कई अमेरिका सां राब्तनि लाइ पहिरीं वारा राब्ता हाणे मुयसर न रहिया आहिनि तेहरान अमेरिका सां राब्तनि लाइ वक़्ती रस्तो तयारु करे रहियो आहे जेको बाद में मुस्तक़िल रस्तो बि थी सघे थो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पारां अॻोणे फ़ौजियुनि जे मान में आजियाणो मुल्की दिफ़ा लाइ कयल ख़िदमतनि जी साहरा ISPR मौजूद फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर पारां ॾिनल आजियाणे में अॻोणे फ़ौजी सरबराहन समेत वॾे अंग में रिटायर्ड आफ़ीसर ऐं जवान शरीक थिया फील्ड मार्शल मुल्की दिफ़ा लाइ कयल ख़िदमतनि ते संदन वाखाण कई अॻोणनि फ़ौजियुनि पारां अस्करी क़यादत ते एतमाद जो इज़हार क़ौमी इतिहाद अमुन ऐं ख़ुशहालीअ लाइ किरदार जारी रखण वारे अज़म जो वर्जाउ NDMA चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां मुलाकात NDMA चेयरमैन पारां वज़ीर आज़म खे मौसमियाती तब्दीली जे हवाले सां ब्रीफिंग ॾिनी वई वज़ीर आज़म पारां NDMA खे सूबनि सां सहकार करण जी हिदायत शहबाज शरीफ चयो त मुतासिरनि खे सहूलियतूं फराहम कयूं वञनि कराची जी अदालत में नौजवान वापारी मीर रज़ा केस जी ॿुधणी अदालत पारां जांच में सुस्तीअ ते ॻणती ज़ाहिर 24 अगस्त ताईं जांच मुकमिल करे रिपोर्ट पेश करण जी हिदायत अदालत रिमार्क्स ॾींदे चयो त वालिद ख़ानदान ऐं शहरी परेशान आहिनि हिकु माण्हू जो क़तल थियो आहे जांच करे हक़ीक़तूं साम्हूं आणियो अदालत मीर रज़ा जे भाईवार मोहम्मद अहमद जी अबूरी ज़मानत में 10 ॾींहनि जी वाद करे छॾी पुलिस सां जांच में सहकार करण जी हिदायत वकील जबरान नासिर चयो त मीर रज़ा जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी चाहियूं था गुड्स ट्रांसपोर्टर जे मुलगीर हड़ताल 8 ॾींहं बि जारी कराची पोर्ट कंटेनर सां भरिजी वई मुल्क में सामान जी फरहमी मुतासिर थियण लॻी गुड्स ट्रांसपोर्टर मौजूद रोज़ानो लगभॻ 10,000 कंटेनर बंदरगाहनि मां निकरंदा आहिनि पर हड़ताल सबबि रूकजी विया आहिनि हड़ताल सबबि मुल्की मैशियत खे 50 अरब खां वधीक जो नुक़सान थियो आहे शादी जे बहाने पाकिस्तान घुराए क़ैद करण जी शिकायत इंडोनेशियन नारी हैदराबाद मां बाज़ियाब इंडोनेशिया जी नारी जी शिकायत वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जे कार्रवाई मेरिन मैसेज खे बाज़ियाब करायो कोर्ट जे हुकुम ते पुलिस कार्रवाई करे नारी खे बाज़ियाब करायो ॾखण में सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ सिंधी अदबी संगत जी रैली अदीबनि शाइरनि सियासी समाजी धुरियुनि ऐं सिविल सोसाइटी पारां रैली कढी धरणो आयो वियो अॻवाणनि चयो त सिंध जो विरहाङो कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे जिदोजहद जारी रहंदी हुकुमरान सिंध खे विरहाइण वारियूं साज़िशूं बंदि कनि नसीराबाद जे मुख़्तलिफ़ शाखनि में ज़रई पाणी जी खोट बिजलीअ जी लोड शेडिंग ऐं बदमनी ख़िलाफ़ JUI जो एहतजाज काठिया मोहला खां रैली कढी अर्थर शाख जे पुल वटि धरणो आयो वियो अॻवाणनि चयो त ज़रई पाणीअ जी खोट सबबि आबादगार परेशान आहिनि शहरनि खां फुरूं बि रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि आबादगारनि खे पाणी ॾेई अमुन बहाल करायो वञे बलोचिस्तान जे शहर ओस्ता मोहम्मद में आबादगारनि जो पाणी कोर्ट ख़िलाफ़ एहतजाज आपाशी आफ़ीस आलो धरणो एनरो माइनर जे आबादगारनि पाणी कोर्ट ख़िलाफ़ एहतजाज करे धरणो हयो आबादगारनि चयो आहे त शाखनि में पाणीअ कोर्ट सबबि फसल सुकी रहिया आहिनि पाणी फराहम करे ज़राइत ऐं ज़िंदगियूं बचायूं वञनि
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
3: आप सुन रहे हैं GFM 88 Network, सिंध की आवाज।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
5: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
6: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन दिन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
8: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
10: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
11: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
8: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-3843-842।
12: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
10: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
10: گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف اے ماتلی بدین
2: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار لائن لائے
10: اسانجے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
2: 0331252578 6
10: جی ہاں بڑی 231525786
2: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک
10: سندھ جو آواز

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
6: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
7: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबब न बणंदो।
4: अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

19 प्रोग्राम चलते के नाम मस्ती में आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जा रहा है। हम आ चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में और लगता ये है कि आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सही लगता है ना मुझे? बिल्कुल सही लगता है। तो जल्दी जल्दी से बताएं कौन कौन हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ हैं तो पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से मोहब्बतें होती हैं। बिल्कुल जी, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। उसके अलावा बताइए आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने यहाँ से आप लोगों से सवाल ही पूछा है कि आप मुझे ये बता रहे हैं, कुछ लोगों की आदत होती है ना कि वो बहुत सारे ऐसे अल्फाज बोलते हैं बात बात पे, बीच बीच में कुछ ऐसा लफ्ज होता है जो बोलना उनकी आदत होती है। तो बिल्कुल वैसे ही आज आप मुझे ये बताएंगे कि आपका ऐसा कौन सा वर्ड है जो आप बात बात पर बोलते हैं, मतलब बोलना बहुत ज्यादा आपकी आदत है। उनके अलावा अगर तुम से अगर मौजूद है तो असा 888 और फेसबुक से तुम ज्वाइन करना वनो पाया। सो 888 से तुम मैसेज करे सको था पाने मोबाइल खड़ो, मोबाइल के राइट ऑप्शन में वनो टाइप कयो LRK सिंगल स्पेस दियो, पाने पूरो मैसेज लिखो, टॉपिक के फॉलो कयो, उनके तुम शेयर करे छो था 888 से। अगर तुम मुखे फेसबुक से बुधन चाहो था तो जी लाड़काना FM 88.8 असो पेज रहे। जल्दी जल्दी पेज ते अचो, पेज के फॉलो करे छो, पेज के फॉलो करण का पोई तवा असांची लाइव पोस्ट ही अचो, पोस्ट जो पोस्टमार्टम ना गणो, बस पोस्ट के लाइक कयो, कमेंट कयो, शेयर करे छो। ओके, सो ही तरीके कार असांजे प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ हाँ जी, इसीलिए कहते हैं ना कि वक्त का कुछ पता ही नहीं चलता। वक्त आज जो है ना वो पता नहीं है कि आगे भी वैसा ही रहेगा, तो इसीलिए कहते हैं जो आपने करना है बस वो कर ले, कल पर तमाम चीजें मत छोड़ा करे। उनके अलावा जो सो तमाम जा फीडबैक आए, अच्छा पैनल थी अगर मारे साथ ही, तो पैनल से तमाम जा खोड़ मैसेजेस जमा थी चुका है, तो पैनल की तरफ भी अचूं था। सो सब का पहले जो मुख्य मैसेज मिलो है वो आई जनाब इरम जो कहती हैं लव यू सो मच मेरी दिलबर दोस्त, मुबारक हो इतने सालों के बाद आपने फ्राइडे को भी शो किया था। हाँ, ये भी एक चीज पूरी हो गई कि मैंने फ्राइडे वाले दिन भी शो किया। सही है जी, सब कुछ कर लिया, फ्राइडे वाले दिन भी शो कर लिया। मकसूद मल्हा कहते हैं चलती का नाम मस्ती शो में वेलकम एंड खुश आमदीद आदाब, आपको भी आदाब अर्ज है जी। और मकसूद मल्हा कहते हैं अच्छा चलती का नाम मस्ती में पता नहीं क्या कह रहे। उनके अलावा रसूलाबाद का आबिद हुसैन शंबानी है, वालेकुम असलम अदी मुझो तकिया कलाम आहे खां पोई तवां जो मैसेज मिसिंग पार्ट आहे। और उनका अलावा मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर भाई हमारे साथ कहते हैं जबरदस्त ये शो और सॉन्ग सुनाए हुमेरा चन्ना का, हुमेरा चन्ना का गाना आपको सुनाने की फुल कोशिश की जाएगी। और रसूलाबाद से आबिद हुसैन शंबानी भाई कहते हैं असलम अलैकुम अदी मुझो तकिया कलाम नाहे, बाकी अक्सर चवंदो आया जेको आसो वो पंहिंजो आहे

वैसे आहे दुख जो गानो पर फीलिंग डाढो भलो तो हुजे हिन अहिड़े गाने ते केरु डुख कंदो बाबा। अच्छा हैप्पी फायजा हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, सिडो जानी आप कैसी, आपका शो माशाल्लाह सुपर डुपर और आप उससे भी ऊपर, हम भी आपके साथ साथ ही जाना, थैंक यू वेरी मच हैप्पी फायजा। और साइमा मीर हमारे साथ ही कहती पल पल हिफाजत करना यारब उन फूलों जैसे लोगों की जिन्हें हम बड़े खुलूस से रोज याद करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद प्यारी। टुकड़ा टुकड़ा।

ओके जी, वालेकुम अस्सलाम माय स्वीट आशिक, आप कैसी हैं? मैं हैप्पी गर्ल हूँ, तबीयत कैसी है? वेलकम टू शो स्वीटी, मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसी हैं? और मकसूद कहते हैं जवाब में जब किसी से बात करता हूँ तो बोलता हूँ ओ हेलो भाऊ, और जब किसी से किसी की बात सुनता हूँ तो बोलता हूँ कसम थई नानी जो सही बुधा सैया बाबा।

अनवर भागे थे, ये मैं क्या देख रहा हूँ, बस कभी कभी आंखों पर यकीन नहीं आता। हाँ जी निदा, बिल्कुल सब देखा है। किशोर भागे थे लगे तो मुझो भी एआई वर्जन अच्छी वयो आ, कल खां फेल कयां पयो। अच्छा मतलब कहना क्या चाहते हो? असनौला फुल पोटरो हमारे साथ मौजूद है। हाय जी, हाय। दर्द दिल में बिल्कुल अलर्ट हूँ जी, ता होशियारी पकड़ियो। ये गाल न था मता समझो। अच्छा हिदायत अल्लाह कहते ही साओ वगो यारो मुखे आजादी पर आयो है। सफा सही था चो अल्लाह। हाँ भाई हाँ, डाडू भलो गानो।

मेरी पोस्ट के लाइक शेयर करना। हेलो हेलो हेलो हेलो, नितिनी कहती है उस दिन पुप्पो प्यार से बात कर रही थी, फिर मुझे लगा ये एआई तो नहीं ना, हो भी सकता है। अखलाक बलोच भाई ये मेरे सुन रहे, कहते नाइस शो, थैंक यू थैंक यू। अच्छा सादिया तमाम गाने जी फरमाइश कई, मैं कोशिश कहती तानी पसंद जो गानों वाली मोहम्मद समान भाषा की बुद्धि पयो, वेलकम जी। अखलाक भा तुम टॉपिक जो जवाब दिनो है

इहो बि सही आहे, जेके समुझ में न अचे हुनखे चवंदा कयो। बाक़ी जेके समुझ में ईंदो न पोइ हुनजे हथां तव्हांखे कुटकी मिलंदी। हांजी ॿी ॻाल्हि न, ॾाढो भलो गानो जेको असां ॿुधोसीं, ही वारो सॉन्ग बि असांजी लिस्ट में आहे, सो हिन खे बि ॿुधंदासीं। इन जी फरमाइश असांखे असांजी उदास लड़कीअ कई आहे।

हिन गाने खे राति जो ॿुधण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे, सभु सूर यादि अची वेंदा आहिनि। बिल्कुल बहुत खूबसूरत गाना। अच्छा ये हमारे साथ एमी आ गया मैं आपके शो में, सलाम एंड गुड आफ्टरनून, कैफा हालो की या हबीबी। मोबाइल चार्ज नहीं था फिर भी आपके शो में आने के लिए किसी और का मोबाइल उठा के आ गया एम हमारे साथ। अली मुर्तजा को वेलकम कहा जाता है, थैंक यू थैंक यू। कहते नाम अच्छा, कहते हम लेट क्या हुए, नाम ही बदल डाले। भाई ॾिसो बाबा ॾिसो, तॾहिं चवंदा आहिनि डेली ईंदा कयो जी, तव्हां सफ़ा अपडेट रहो हर चीज़ खां।

सारा सबर कियो मां तव्हांखे इलाही सारा हाणे जेको ईंदो न लास्ट लिंक ईंदो हुन में मां तव्हांखे इलाही सारा ए आई जा गाना ॿुधाईंदमि उहे तव्हां ॿुधजो ई तव्हांखे मतिलबु वॾो मज़ो अची वेंदो तव्हां हिकिड़ी ॿी दुनिया में गुम थी वेंदा सो ॿियो हाणे जेको लिंक ईंदो न हुन में सभु असां ए आई वारा गाना ॿुधंदासीं सही आहे अलॻि अलॻि अजीब अजीब हरकतूं करण में मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असन जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए। तेंदो आसान जवाब यो आ ही बार भी असां वट अल्लाह ताला जी एक वड़ी नियामत आए। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है, जरूरी आए। असां जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए। ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताईं जितरा भी बार आए उनन के ये बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लगाना लाजमी आए।
0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी, अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
6: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

ओके जी, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और हमारे साथ यहाँ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़खाना के लाइव स्टूडियो से आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे जनाब और प्रोग्राम सुन रहे हैं चलते का नाम मस्ती। बिल्कुल जनाब चलती का नाम मस्ती होना चाहिए क्योंकि मस्ती नहीं रुकनी चाहिए भाई जान गाल तब सिद्धी आयुन का अलावा सची आऊ जी प्रोग्राम जी लास्ट लिंक में जल्दी प्रोग्राम खत्म थी अच्छा सो बिल्कुल तवां जो मैसेजेस आयन तवां जो गालियो आयन आई तवां से ला भला भला गाना मा सेट करी छड्या आयन ये जी मा ता के चयो ना मोटी नासी जे का सई लास्ट लिंक हुंदी ना मा ता के सब एआई वाला गाना बुधराई ना अला यकीन कंदा आजकल मतलब अगर मुंजो थोड़ो मूड थिनो ना कोई गाना बुधण ते तो मा एआई जा गाना बुधनी सब वाइडा जबरदस्त आयन बुधी तवां के यकीन नहीं दो तो बापा एआई जा गाना आयन सो बिल्कुल मुझे ख्याल में स्टार्टिंग क्यों ही एकड़ो गानो आज को तमां के बुधराइंदा सी इनन गानन मा एकड़ो द फेवरेट सॉन्ग आ मुझे जको जको ल मा डाढो बुधांती सो ही वारो सॉन्ग आ तमां के डेडिकेट आ है बिल्कुल जी तमां से सगड मौजूद आए प्रोग्राम आ है चल दे कना मस्ती तमां जे सदरा तमां सगड आए मोसा गड के राय मुखे बुधाइंदा हलो आई हां 8881 फेसबुक ते तमां के ज्वाइन करना वणो पया आई फेसबुक ते जे के मानो मौजूद आनो पोस्ट के ज्यादा लाइक और शेयर करना हलो।

ओके जी, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं ऐसा है कि भाई हाँ लग रहा है कि यहाँ पर ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज नहीं होनी चाहिए, जिस वजह से लग रहा है कि ये गाना जो है ना AI सॉन्ग है, वरना तो कोई यकीन नहीं कर सकता कि क्या ये गाना AI है। बिल्कुल सही, सुन ले भाई, देख ले कितनी AI ने तरक्की कर ली है। ओके जी, तो तव्हां जो कुछ मैसेज आहिनि, मैसेज पढ़ी वठूं था, उन खां पोइ तसली सां वेही तव्हां खे भला भला AI जा गाना बि ॿुधरायूं था। अच्छा, सो ही असां सां गॾु मौजूदु आहे, अस्सलाम वालेकुम, फुलजी स्टेशन लग नूरपुर खां फौजी पठान खान खोसो, असांखे गानो ॿुधरायो फोटो ज़रदारी बोल आहिनि। ठीकु आहे भाउ, तव्हांजो मोहबतूं आहिनि, प्रोग्राम ॿुधो पिया। इरम कहती है मैं मीम लवर हूँ, चलें जी ठीक है, अच्छी बात है। ये मौजूद है हक मौजूद, मुलाड इस्लाम मदद, बदीन खान, डॉक्टर हसीना सुमरो, कहती है प्यारी असां के गानो बुधायो, फरजाना परवीन बोल आहे ने मुझे हथ जो रुमाल बे केंखे न दे जाए, हाजिर हाजिर इन प्रोग्राम में न तो 5 बजे वाले प्रोग्राम में ताजी पसंद जो गानो हलाईंदासीं। और सैमा मीर कहती है अरे वरी बिल्कुल यही गाला। ओके जी, ओके, कोई बात नहीं, वैसे आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ है, काफी दिनों के बाद वैसे आप हमारे प्रोग्राम में शामिल रही हैं। सायमा मीर कहती है हाय फौजिया बतूल दा गाना अमेजिंग, मस्त मस्त, और सबा एंड सिद्रा टॉपिक सही सही, अल्लाह खैर करेगा। चलिए बहुत बढ़िया। चाचा खालिद कहते लगे थो अजो मुझो गानो कोन प्ले, अजो तमा मतलब किस्मत असा गाने जी फरमाइश कई, वो गानो वरी AI जो हो सो वो भी मु लिस्ट में लगाए छो। और ये हमारे साथ ही आरजे मेरे पास

अच्छा नाम तो आपने लिखा नहीं अपना, पता नहीं कौन है, नाम लिखा करें पैनल पर जब भी आप मुझे मैसेज किया करें तो। इरम कहती हैं आप ही जवाब है, अल्लाह तौबा तौबा। चलें जी सही बात है। मीर बालाज ब्रोई हमारे साथ मौजूद है, आपको भी वेलकम करते। ये जो गाना अभी लगा है ना, ये गाना मेरा आजकल बहुत फेवरेट बन चुका है। ये गाना जरा सुनिएगा, ये AI का सॉन्ग है, आपको यकीन ही नहीं आएगा।

आजकल इस गाने के सुरूर में मैं खो चुकी हूँ बहुत ज्यादा, और कितना खूबसूरत गाना था सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। उनके अलावा बिल्कुल जी तमाशा से गड मौजूद आए हो, ये मौजूद हैं डॉक्टर हसीना सुमरो। डॉक्टर हसीना सुमरो को वेलकम कहा जाता है आप हमारे साथ, और संजय जी पाल भाई हमारे साथ है। खामोश और अली मुर्तजा कहते हैं तेरा नाम लेती हूँ प्ले राहत सॉन्ग इन वॉइस ऑफ सिडो क्या मतलब कुछ भी। और सईदा बुखारी हमारे साथ हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मोहतरमा, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आपने बहुत अच्छी सी दुआएं दे दी हैं मुझे, सो थैंक यू सो मच सब दुआओं के लिए। और मोहम्मद जमान कहते हैं नेटवर्क का कोई हल बताएं, सुकून से शो नहीं सुनने देते, जो ए बताई थी ना वो डाउनलोड कर ले। दर्दे दिल कहती है और अगर कोई सीरियस बात हो तो बोलती हूँ न कर सही है। सईदा बुखारी कहती है ये बेहतर है कि इंसान ना खुश हो मगर हकीकत के बदतरीन सूरत से वाकिफ हो, या हकीकत निदली कहती है रात को सर्दी दिन को गर्मी ये सब क्या है पूजा, बस मत पूछे पूजा से, पूजा खुद सताए हुए और संजय जयपाल भाई आपका बहुत शुक्रिया, शमन का गाना हमने ऑलरेडी सुन लिया है।

0: रह गई थी कब।
1: सिद्धार्थ कहती आज हमारे गाने भी एआई खा गए। बिल्कुल ऐसा है।
0: चाहता है सभी अगर लौट आए तू एक बार।
1: भाई तभी कह रही हूँ सिंगर्स तो गयो, सिंगर्स तो गयो ठाकुर। अच्छा हुआ मैं सिंगर नहीं बनी।
0: कोई शिकवा होगा न कोई गिला, बस तेरा साथ हो।
1: हाँ दर्दे दिल कहती है क्या ये तो कमाल हो गया, इतने अच्छे गाने मैं बोल रही हूँ ना आजकल, मैं सुनी ऐसे गा रही हूँ।

बस बैठे बैठे हमें पूजा याद आ गई। पूजा को भी याद करने का ऐसे दिल कर रहा था। और अच्छा अब्दुल गफार भाई, वालेकुम अस्सलाम, आप भी सलामत रहे, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ साथ। हजार भाई कहते हैं कि ये सच है कि जागती आंखों में तेरे ख्वाब आते हैं, प्यार मोहब्बत और इश्क कब किसी को रास आते हैं। वाह वाह।

सादिया के भी यहाँ पे आज आपका मूड माशाल्लाह जबरदस्त है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। विशोरबा कहते डॉक्टर के लिखा सब सूर खत्म थी वेंदा डॉक्टर वट इलाज ही कोने असाजे सूर सनाला पल वोटो भाई कहते सुधरा क्या खाती हो इतना अच्छा बोलती हो बस वही खाती हूँ जो आप सब खाते हैं। और ऐसन कहते असा भी बुद्धू था शो मैडम मुस्कान जाए उदा कसम दे। और ये हमारे प्रोग्राम का लास्ट ब्रेक हमने लगा लिया है जी जो चाचे ने फरमाइश कर दिया था भाई चाचो एडो सियाणो दवा।

लोग देखिए हमारे साथ है सज्जन भाई माशी गोठ जान मोहम्मद माशी मोरो खा तमाम संगे ज्वाइन कयो आए सो मोहब्बत वाइन भावन जो और ये माचो दी अस्सलाम वालेकुम ताहिरा लाड़काना खा आपी छाला तमाम जो ताहिरा मसफा भलिया ता बता की आयो और बदीन खा डॉक्टर हसीना सुमरो साहिबा नंदड़ी छोकरी मासूम छोकरी मैसेज पूरो पढ़ो हाजिर डॉक्टर साहिबा तमाम जो मैसेज पूरो पढ़ना सी आई तमाम जो गानो रह जिया तो वो असा 5 बजे वाले प्रोग्राम में हलाए वठना सी ठीक है सो थैंक यू सो मच ता सबनी सोनन प्यारन मिठड़न मानन जो ये मोहब्बतू आन बाबा जगह पंद कराइन थू।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आजाद कश्मीर में चूंडन में कामयाब विवाद हुकूमत साजी समेत मुख्तलिफ़ मामलन ते गौर ज़रियन जो चवण है इजलास दौरान मुल्क जी मुआशी ऐं सियासी सूरतहाल जो भी जाइज़ो वरितो वियो।
2: After we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
1: ट्रंप जो अपना हरमुज के जल्द अमेरिकी इलाइको करार देने जो ऐलान न्यूयॉर्क में तकरीब के खिताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान ते मुआशी दबाव विझी जंग खत्म करण ते मजबूर कंदासीं। जल्द अपना हरमुज के अमेरिकी इलाइको करार देण जो बि ऐलान कंदसि। व्हाइट हाउस अपना हरमुज बाबति सदर ट्रंप जे बयान खे मज़ाक करार ॾेई छॾियो। अमेरिका सां ॻाल्हियुनि जी बहालीअ जो फ़ैसिलो नाहे कयो। पैगामनि जी ॾे वटि ॻाल्हियूं नाहिनि थींदियूं। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची चयो आहे त इस्लामाबाद मुफ़ाहमतनामे में जंग बंदी न पर जंग जे ख़ात्मे जी ॻाल्हि थी हुई, जंहिंजी अमेरिका भञकड़ी कई आहे। अमेरिका सां राब्तनि लाइ पहिरीं वारा राब्ता हाणे मुयसर न रहिया आहिनि। तेहरान अमेरिका सां राब्तनि लाइ वक़्ती रस्तो तयारु करे रहियो आहे, जेको बाद में मुस्तक़िल रस्तो बि थी सघे थो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पारां अॻूणनि फ़ौजियुनि जे मान में आजियाणो। मुल्की दिफ़ा लाइ कयल ख़िदमतनि जी साहरा। SPR मौजूदु फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर पारां ॾिनल आजियाणे में अॻूणे फ़ौजी सरबराहनि समेत वॾे अंग में रिटायर्ड आफ़ीसर ऐं जवान शरीक थिया। फील्ड मार्शल मुल्की दिफ़ा लाइ कयल ख़िदमतनि ते संदन वाखाण कई। अॻूणनि फ़ौजियुनि पारां बे अस्करी क़यादत ते एतमाद जो इज़हार। क़ौमी इतिहाद अमुन ऐं ख़ुशहालीअ लाइ किरदार जारी रखण वारे अज़म जो वर्जाउ। NDMA चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां मुलाकात। NDMA चेयरमैन पारां वज़ीर आज़म खे मौसमियाती तब्दीलीअ जे हवाले सां ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म पारां NDMA खे सूबनि सां सहकार करण जी हिदायत। शहबाज शरीफ चयो त मुतासिरनि खे सहूलियतूं फराहम कयूं वञनि। कराची जी अदालत में नौजवान वापारी मीर रज़ा केस जी ॿुधणी। अदालत पारां जांच में सुस्तीअ ते ॻणती ज़ाहिर। 24 अगस्त ताईं जांच मुकमल करे रिपोर्ट पेश करण जी हिदायत। अदालत रिमार्क्स ॾींदे चयो त वालिद ख़ानदान ऐं शहरी परेशान आहिनि। हिकु माण्हू जो क़तल थियो आहे, जांच करे हक़ीक़तूं साम्हूं आणियो। अदालत मीर रज़ा जे भाईवार मोहम्मद अहमद जी अबूरी ज़मानत में 10 ॾींहनि जी वाधि करे छॾी। पुलिस सां जांच में सहकार करण जी हिदायत। वकील जबरान नासिर चयो त मीर रज़ा जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी चाहियूं था। गुड्स ट्रांसपोर्टर जी मुलगीर हड़ताल 8 ॾींहं बि जारी। कराची पोर्ट कंटेनर सां भरिजी वई। मुल्क में सामान जी फराहमी मुतासिर थियण लगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मूजिब रोज़ानो लगभग 10,000 कंटेनर बंदरगाहनि मां निकरंदा आहिनि, पर हड़ताल सबब रूकजी विया आहिनि। हड़ताल सबब मुल्की मैशियत खे 50 अरब खां वधीक जो नुक़सान थियो आहे। शादी जे बहाने पाकिस्तान घुराए क़ैद करण जी शिकायत ते नौशिया नारी हैदराबाद मां बाज़ियाब। नौशिया जी नारी शिकायत ते वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जी कार्रवाई। मर्लिन मैसेज खे बाज़ियाब करायो। कोर्ट जे हुकुम ते पुलिस कार्रवाई करे नारीअ खे बाज़ियाब करायो। चक में करोड़ा ऐं जतोई बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में फायरिंग। वाटेड़ो क़तल हिकु ज़ख़्मी बचल भयो। थाणे जी हद गोठ गुलाम नबी कलोड़ो में ॿिन्ही धुरियुनि विच में फायरिंग दौरान वाटेड़ो आसिफ मारिजी वियो। फायरिंग सबब भर पासे जा रहवासी ख़ौफ़ में मुबतला। इलाइक़े में छिकताण वधीक रतो छाण जो ख़दशो आहे। सखर में जूनियर साइंस टीचर जे उमेदवारनि जो मुतालबनि जी मंताल आहे। जा जूनियर साइंस टीचर उमेदवारनि जो पासिंग मार्कूं 55 मां घटाए 50 करण जो मुतालबो। 50 खां 54 नंबर हासिल कंदड़ उमेदवारनि खे बि भर्ती वारे अमल में शामिल करण जी अपील। नसीराबाद जे मुख़्तलिफ़ शाखनि में ज़रई पाणी जी खोट, बिजली जी लोड शेडिंग, बदमनी ख़िलाफ़ JUI जो एहतजाज, काटिया मोहला खां रैली कढी अर्थर शाख जे पुल वटि धरणो हयो वियो। अॻवाणनि चयो त ज़रई पाणीअ जी खोट सबबि आबादगार परेशान आहिनि, शहरनि खां फुरूं बिरोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। आबादगारनि खे पाणी ॾेई अमुन बहाल करायो वञे।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
2: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतन ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाय 2347-3141-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-3843-842।
6: खुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
8: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 0331252576।
4: जी हा, 231-5525-786।
8: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: 3:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: Har din har peher, zindagi ki leher, GFM 88 Network, Sindh ki awaaz.
4: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो, त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
3: अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है और वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 116 पे।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई, औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी, आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3-41-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-842-842।
6: खुशख़बरी, खुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
9: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: टेरिटरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
2: ट्रंप जो आपने हर्मस के जल्द अमेरिकी इलाइक़ों करार ॾियण जो ऐलान न्यूयॉर्क में तकलीफ़ की किताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान ते मुआशी दबाव विझी जंग ख़त्म करण ते मजबूर कंदासीं। जल्द आपने हर्मस खे अमेरिकी इलाइक़ों करार ॾियण जो बि ऐलान कंदसि। व्हाइट हाउस आपने हर्मस बाबति सदर ट्रंप जे बयान खे मज़ाक करार ॾेई छॾियो। अमेरिका सां ॻाल्हियुनि जी बहालीअ जो फ़ैसिलो नाहे कयो। पैगामनि जी ॾे वठि ॻाल्हियूं नाहिनि हूंदियूं। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची चयो आहे त इस्लामाबाद मुफ़ाहिमतनामे में जंग बंदी न पर जंग जे ख़ात्मे जी ॻाल्हि थी हुई, जंहिंजी अमेरिका भञकड़ी कई आहे। अमेरिका सां राब्तनि लाइ पहिरें वारा राब्ता हाणे मुयसरु न रहिया आहिनि। तेहरान अमेरिका सां राब्तनि लाइ वक़्ती रस्तो तयारु करे रहियो आहे, जेको बाद में मुस्तक़िल रस्तो बि थी सघे थो। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि सीड़पकारी बाबति इजलास। केटी बंदर मनसूबे ते गौर। केटी बंदर जी तरक़ीअ लाइ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत जाम मॉडल तयारु करण जी हिदायत। मुराद शाह चयो आहे त केटी बंदर मनसूबो रुगो सिंध न पर मुल्की तरक़ीअ लाइ अहम आहे। केटी बंदर खे तवानाई जे गेट वे तौर तरक़ी ॾिनी वेंदी। केटी बंदर मनसूबो तयारु थींदे ई मुल्की ऐं परॾेही सीड़पकारनि जो वॾो अंग हिते सीड़पकारी लाइ रुख कंदो। केटी बंदर खे जदीद डीप सी पोर्ट ऐं मुआशी कॉरिडोर में तब्दील कयो वेंदो। केटी बंदर जी तरक़ीअ सां कराची पोर्ट ते दबाउ घटि थींदो, रोज़गार जा नवां मौक़ा पैदा थींदा ऐं सनअतूं तरक़ी कंदियूं। अॻूणे वज़ीर आज़म नून लीग जे सदर नवाज़ शरीफ़ जी सदारत हेठि पार्टी अॻवाननि जो मरीम अहम इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ बि शरीक। आज़ाद कश्मीर में चूंडनि में कामयाबी बाद हुकूमत साज़ी समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते गौर। ज़रियनि जो चवणु आहे त इजलास दौरान मुल्क जी मुआशी ऐं सियासी सूरतहाल जो बि जाइज़ो वरितो वियो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पारां अॻूणनि फ़ौजियुनि जे मान में आजियाणो। मुल्की दिफ़ा लाइ कयल ख़िदमतनि जी साहरा। SPR मौजूदु फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर पारां ॾिनल आजियाणे में अॻूणे फ़ौजी सरबराहन समेत वॾे अंग में रिटायर्ड आफ़ीसर ऐं जवान शरीक थिया। फील्ड मार्शल मुल्की दिफ़ा लाइ कयल ख़िदमतनि ते संदन वाखाण कई। अॻूणनि फ़ौजियुनि पारां बे अस्करी क़यादत ते एतमाद जो इज़हार। क़ौमी इतिहाद अमुन ऐं ख़ुशहालीअ लाइ किरदार जारी रखण वारे आज़म जो वर्जाउ। NDMA चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां मुलाकात। NDMA चेयरमैन पारां वज़ीर आज़म खे मौसमियाती तब्दीलीअ जे हवाले सां ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म पारां NDMA खे सूबनि सां सहकार करण जी हिदायत। शहबाज शरीफ चयो त मुतासिरनि खे सहूलियतूं फराहम कयूं वञनि। कराची जी अदालत में नौजवान वापारी मीर रज़ा केस जी ॿुधणी। अदालत पारां जांच में सुस्तीअ ते ॻणती ज़ाहिर। 24 अगस्त ताईं जांच मुकमल करे रिपोर्ट पेश करण जी हिदायत। अदालत रिमार्क्स ॾींदे चयो त वालिद ख़ानदान ऐं शहरी परेशान आहिनि। हिकु माण्हू जो क़तल थियो आहे। जांच करे हक़ीक़तूं साम्हूं आणियो। अदालत मीर रज़ा जे भाईवार मोहम्मद अहमद जी अबूरी ज़मानत में 10 ॾींहनि जी वाधि करे छॾी। पुलिस सां जांच में सहकार करण जी हिदायत। वकील जबरान नासिर चयो त मीर रज़ा जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी चाहियूं था। गुड्स ट्रांसपोर्टर जी मुलगीर हड़ताल 8 ॾींहं बि जारी। कराची पोर्ट कंटेनर सां भरिजी वई। मुल्क में सामान जी फराहमी मुतासिर थियण लॻी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मूजिबि रोज़ानो लगभग 10,000 कंटेनर बंदरगाहनि मां निकरंदा आहिनि, पर हड़ताल सबबि रूकजी विया आहिनि। हड़ताल सबबि मुल्की मैशियत खे 50 अरब खां वधीक जो नुक़सान थियो आहे। शादी जे बहाने पाकिस्तान घुराए क़ैद करण जी शिकायत ते नौशिया नारी हैदराबाद मां बाज़ियाब। नौशिया जी नारी शिकायत ते वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जी कार्रवाई। मर्लिन मैसेज खे बाज़ियाब करायो। कोर्ट जे हुकुम ते पुलिस कार्रवाई करे नारीअ खे बाज़ियाब करायो। चक में कलोड़ा ऐं जतोई बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में फायरिंग। वाटेड़ो क़तल हिकु ज़ख़्मी बचल भयो। थाणे जी हद गोट गुलाम नबी कलोड़ो में ॿिन्ही धुरियुनि विच में फायरिंग दौरान वाटेड़ो आसिफ मारिजी वियो। फायरिंग सबब भर पासे जा रहे वासी खौफ में मुबतला, इलाके में छिकताड़ वधीक रतो छाण जो खदशो है। सखर में जूनियर साइंस टीचर जे उम्मीदवारन जो मुतालबन की मंत्रालयत जा जूनियर साइंस टीचर उम्मीदवारन जो पासिंग मार्कू 55 मां घटाए 50 करण जो मुतालबो, 50 खां 54 नंबर हासिल कंदड़ उम्मीदवारन के भी भर्ती वारे अमल में शामिल करण जी अपील। नसीराबाद के मुख्तलिफ शाखन में ज़रई पानी की खोट, बिजली की लोड शेडिंग, बदमनी खिलाफ जेयूआई जो एहतजाज, काटिया मोहला खां रैली कढ़ी अर्थर शाख के पुल वट धरणो हयो वयो। अगवाणन चयो त ज़रई पानी की खोट सबब आबादगार परेशान आहिन, शहरन खां फुरू गिरोह जो मामूल बणियल आहिन, आबादगारन के पानी डेई अमुन बहाल करायो वञे। सिंध के मुख्तलिफ शहरन में औरत समेत 3 जणन जा लाश हथ छाछरो वेझो घर के कमरे में औरत कविता मेघवाड़ जो फाहो लगल लाश मिलो है। सखर के सिटी पॉइंट बायपास वटा खीरधर केनाल में नामालूम शख्स जो लाश हथायो है, सुणप न थी सकी है। सखर बैराज में भी 1 जणे जो लाश मिलो है, सुणप न थी सकी है।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुल आसान आहे। ये असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
5: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
6: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
7: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
8: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
9: खुशखबरी, अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रखंदा ਘੰਟਾ ਨਿਜ਼ਾਮਾਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ 24 ਕਲਾਕ ਖੁੱਲ੍ਹਲ ਰਹਿੰਦੋ। ਨਿਜ਼ਾਮਾਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ OT, ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਐਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਆਹੇ। ਨਿਜ਼ਾਮਾਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਸਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਈ ਵਜੇ ਥੀ। ਵਧੀਕ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਈ ਐਡਮਿਨ ਨਾਨਾ ਸੋਲੰਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 210-31-43-842।
10: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
11: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
10: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
11: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
10: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
11: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
10: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
11: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
8: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
8: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03125252786।
8: जी हा, 231-25-25-786।
6: GAFM रेडियो नेटवर्क,
8: सिंध जो आवाज़।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
7: खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़। सिंध की आवाज़।
1: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: एंड आफ्टर वी फिनिश डिफीटिंग ईरान व्हिच इज बीइंग वेरी बैडली डिफीटेड Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
2: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो अपने हॉर्मुज़ के जल्द अमेरिकी इलाइक़ो करार देने जो ऐलान। न्यूयॉर्क में तकरीब के खिताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान ते मुआशी दबाव विझी जंग खत्म करण ते मजबूर कंदासीं। जल्द आबनाह हुर्मुज़ खे अमेरिकी इलाइक़ो करार ॾियण जो बि ऐलान कंदुसि। व्हाइट हाउस आबनाह हुर्मुज़ बाबति सदर ट्रंप जे बयान खे मज़ाक करार ॾेई छॾियो। अमरीका सां ॻाल्हियुनि जी बहालीअ जो फ़ैसिलो नाहे कयो। पैगामनि जी ॾे वठि ॻाल्हियूं नाहिनि हूंदियूं। ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास राखची जो चवण हो त इस्लामाबाद मफ़ाहमत नामे में जंगबंदी न पर जंग जे ख़ात्मे जी ॻाल्हि थी हुई, जंहिंजी अमरीका भंजकड़ी कई। अमरीका सां राब्तनि लाइ पहिरीं वारा राब्ता हाणे मौसर न रहिया आहिनि। तहरान अमरीका सां राब्तनि लाइ वक़्ती रस्तो तयारु करे रहियो आहे, जेको बाद में मुस्तक़िल रस्तो बि थी सघे थो। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि सीड़पकारी बाबति इजलास। केटी बंदर मनसूबे ते ग़ौर वीचार। केटी बंदर जी तरक़ीअ लाइ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत जामे मॉडल तयार करण जी बि हिदायत। मुराद अली शाह चयो त केटी बंदर मनसूबो रुगो सिंध न पर मुल्की तरक़ीअ लाइ अहम आहे। केटी बंदर खे तवानाई जी गेट वे तौर तरक़ी ॾिनी वेंदी। केटी बंदर मनसूबो तयार थींदे ई मुल्की ऐं परॾेही सीड़पकारनि जो वॾो अंग हिते सीड़पकारी लाइ रुख कंदो। केटी बंदर खे जदीद डेप सी पोर्ट ऐं मुआशी कॉरिडोर में तब्दील कयो वेंदो। केटी बंदर जी तरक़ीअ सां कराची पोर्ट ते दबाव घटि थींदो, रोज़गार जा नवा मौक़ा पैदा थींदा ऐं सनअतूं तरक़ी कंदियूं। अॻूणे वज़ीर आज़म नून लीग जे सदर नवाज़ शरीफ़ जी सदारत हेठि पार्टी अॻवाननि जो मरियम अहम इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं वज़ीर आला मरियम नवाज़ बि शरीक। आज़ाद कश्मीर में चूंडुनि में कामयाबी बाद हुकूमत साज़ी समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ग़ौर वीचार। ज़रियनि जो चवण आहे त इजलास दौरान मुल्क जी मुआशी ऐं सियासी सूरतहाल जो बि जाइज़ो वरितो वियो। आज़ाद कश्मीर जी पाबंदी मड़ियल एक्शन कमेटी ऐं भारतीय फ़ौज जो गठजोड़ बेनकाब। कश्मीरनि पारां इंतशारी कमेटीअ जो बयानो रद्द करण बाद सहूलतकार भारतीय फ़ौज खुलियल तौर साम्हूं अची वई। भारतीय फ़ौज पाकिस्तान मुख़ालिफ़ जज़्बा भड़काइण लाइ पर केरन सेक्टर में वॾनि स्क्रीन ते वीडियोज़ हलाए छॾियूं। माहिरनि मूजिबि भारतीय फ़ौज वालरल कश्मीर में थींदड़ ज़ुल्म लिकाइण लाइ वीडियोज़ ज़रिए कूड़ी प्रोपेगेंडा करे रही आहे। आज़ाद कश्मीर वासियुनि भारतीय प्रोपेगेंडा खे रद्द करे छॾियो आहे। एनडीए में चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक जी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात। एनडीए में चेयरमैन पारां वज़ीर आज़म खे मौसमियाती तब्दीलीअ जे हवाले सां ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म पारां एनडीए में खे सूबनि सां सहकार करण जी हिदायत। शहबाज़ शरीफ़ चयो त मुतासिरनि खे सहूलियतूं फराहम कयूं वञनि। कराचीअ जी अदालत में नौजवान वापारी मीर रज़ा केस जी ॿुधणी। अदालत पारां जांच में सुस्तीअ ते ॻणिती ज़ाहिर। 24 अगस्त ताईं जांच मुकमल करे रिपोर्ट पेश करण जी हिदायत। अदालत रिमार्क्स ॾींदे चयो त वालिद ख़ानदान ऐं शहरी परेशान आहिनि। हिकु माण्हूअ जो क़तल थियो आहे, जांच करे हक़ीक़तूं साम्हूं आणियो। अदालत मीर रज़ा जे भाईवार मोहम्मद अहमद जी अबूरी ज़मानत में 10 ॾींहनि जी वाधि करे छॾी। पुलिस सां जांच में सहकार करण जी बि हिदायत। वकील जिब्रान नासिर चयो त मीर रज़ा जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी चाहियूं था।

गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जी मुल्कगीर हड़ताल 8 ॾींहं बिचारी, कराची पोर्ट कंटेनर सां भरिजी वई, मुल्क में सामान जी फरामी बि मुतासिर थियण लॻी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मूजिब रोज़ानो लॻभॻ 10,000 कंटेनर बंदरगाहनि मां निकरंदा आहिनि, पर हड़ताल सबबि रुकजी विया आहिनि। हड़ताल सबबि मुल्की मैशत खे 50 अरब खां वधीक जो नुक़सान थियो आहे। शादी जे बहाने पाकिस्तान घुराए क़ैद करण जी शिकायत ते इंडोनेशियन नारी हैदराबाद मां बाज़ियाब। इंडोनेशिया जी नारी जी शिकायत ते वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जी कार्रवाई, मर्लिन मैसेज खे बाज़ियाब करायो। कोर्ट जे हुकुम ते पुलिस कार्रवाई करे नारी खे बाज़ियाब करायो। चक में कलोड़ा ऐं जतोई बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में फायरिंग, वाटहड़ू क़तल, हिकु ज़ख़्मी। बचल भयो थाणे जी हैद ॻोठ ग़ुलाम नबी कलोड़ो में ॿिन्ही धुरनि विच में फायरिंग दौरान वाटहड़ू आसिफ महर मारिजी वियो। फायरिंग सबबि भरपासे जा रहवासी ख़ौफ़ में मुब्तला, इलाइक़े में छिकताण, वधीक रत उछण जो ख़दशो। सखर में जूनियर साइंस टीचर्स जे उमेदवारनि जो मुतालबनि जी महिनताल आहे एहतजाज। जूनियर साइंस टीचर उमेदवारनि जो पासिंग मार्क्स 55 मां घटाए 50 करण जो मुतालबो। 50 खां 54 नंबर हासिल कंदड़ उमेदवारनि खे बि भर्ती वारे अमल में शामिल करण जी अपील। नसीराबाद जे मुख़्तलिफ़ शाखनि में ज़रई पाणी जी खोट, बिजलीअ जी लोडशेडिंग ऐं बदमनी ख़िलाफ़ JUI जो एहतजाज। काठिया पाड़े खां रैली कढी आर्थर शाख जे पुल वटि धरणो हयो वियो। अॻवान जो चवण हो त ज़रई पाणी जी खोट सबबि आबादगार परेशान आहिनि, शहरनि खां फुरूं बि रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। आबादगारनि खे पाणी ॾेई अमुन बहाल करायो वञे।

0: दादू में 1.5 करोड़ रुपयनि जे सोन चोरी थियण वारे वाके जो ड्रॉप सीन, चोर फरियादी ऐं संदसि सालो निकितो, फरियादी दुकानदार गिरफ़्तार। SSP दादू चयो आहे त CCTV ऐं जियो फेंसिंग ज़रिए जांच दौरान सोन चोरीअ जो ड्रामो पधरो थियो। सोन चोरी करे खणी वियल दुकानदार जो सालो अर्शद जोयो फरार थी वियो आहे। वधीक जांच जारी आहे। इंडोनेशिया जे साहिली इलाइक़े में ज़लज़लो शिदत 7.7 रिकॉर्ड। ज़लज़ले सबब केतिरियूं ई इमारतूं पट, 20 ॼणा फौत थी विया, केतिरा ई ज़ख़्मी। इंडोनेशियाई साहिल भरिसां आयल ज़लज़ले सबब रहवासी घरनि खां ॿाहिरि निकिरी आया। किरियल इमारतुनि जे मलबे में दॿियल माण्हुनि खे बि ॿाहिरि कढण लाइ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन्हनि में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: अमर सिंध जे सींध में हिक चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़श ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
4: खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: It's 5:15 PM.
7: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Dia Jo Show, a product by Biocon International Pakistan.
8: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
9: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
10: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
9: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 0331252578 6।
2: जी हा, 2315525786।
9: GFM रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

वढ़ज दिल जिया बण वढ़न वाधा तब आही तुम जे दिल जो धणी हो तब आही तुम जे दिल जो धणी ढाढ़ो थो वणी रे मूंखे ढाढ़ो थो वणी ढाढ़ो थो वणी रे।

here.

0: ढोकवणी रे मुखे दा ढोकवणी दा ढोकवणी रे अन्ना दा ढोकवणी।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
3: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो।
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
8: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
8: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु। आहे।
9: अवां जे इत्माद के कायम कंदे, अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे।
8: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार, शादी ऐं बिन तकरीबन लाए हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासिल लाए होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर मान जो सवाल हों असा सही पोलियो की वैक्सीन दह साल तो थी डिनी वे तो असके बार अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हूँ हाई रिस्क हूँ उन असाजी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरा सूबो पूरा पाकिस्तान तेज कर वैक्सीन के लिए उम्र की हद को कें जगह वैक्सीन कें भी उम्र से पोलियो लगी सके तो कें उम्र से वैक्सीन कर सके तो रेशो दह साल के घट आ तेज कर असो रिक्वेस्ट है सभी के बूस्टर डोज लगे।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो अमना हुर्मस के जल्द अमरीकी इलाइक़ो करार डियण जो ऐलान। न्यूयॉर्क में तकरीब के खिताब कंदे अमरीकी सदर चयो त ईरान ते मुआशी दबाव विझी जंग खत्म करण ते मजबूर कंदासीं। जल्द अमना हुर्मस के अमरीकी इलाइक़ो करार डियण जो बि ऐलान कंदुसि। व्हाइट हाउस अमना हुर्मस बाबति सदर ट्रंप जे बयान खे मज़ाक करार ॾेई छॾियो। अमरीका सां ॻाल्हियुनि जी बहाली जो फ़ैसिलो नाहे कयो। पैगामनि जी ॾे वटि ॻाल्हियूं नाहिनि हूंदियूं। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राख़्ची चयो त इस्लामाबाद मफ़ाहमत नामे में जंगबंदी न पर जंग जे ख़ात्मे जी ॻाल्हि थी हुई, जंहिंजी अमरीका भंजे कड़ी कई। अमरीका सां राब्तनि लाइ पहिरीं वारा राब्ता हाणे मुयसरु न रहिया आहिनि। तहरान अमरीका सां राब्तनि लाइ वक़्ती रस्तो तयारु करे रहियो आहे, जेको बाद में मुस्तक़िल रस्तो बि थी सघे थो।

0: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
6: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف اے ماتلی بدین
8: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
4: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
8: 0331252578 6
4: جی ہاں 2311525786
8: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
4: سندھ جو آواز

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: जी सिंध की आवाज।
3: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा प्यारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो प्यारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइण लाज़मी आहे।
4: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद वाइटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत इन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
8: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
9: खुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली हॉस्पिटल कराची जी मशहूर औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT 3 ते कई वञे थी। वधीक मिन 941-43-842।
10: खुशख़बरी, खुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
11: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड,
10: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
11: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
10: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
11: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
10: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
11: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मरियम में पार्टी इजलास के खिताब कंदे नवाज शरीफ चयो त आजाद कश्मीर चूंडुनि जे बिन मरहलनि में ई नून लीग कामयाबी माणी आहे। जड़ीअ तरह पंजाब तब्दील थी रहियो आहे, अहिड़ीअ तरह आज़ाद कश्मीर खे बि तब्दील थियणु घुर्जे। नून लीग डिलीवर न कयो त हुतां जो अवाम नाराज़ थींदो।

0: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो अबनाए हुर्मस के जल्द अमरीकी इलाइक़ो करार ॾियण जो ऐलान। न्यूयॉर्क में तकरीब खे ख़िताब कंदे अमरीकी सदर चयो त ईरान ते मुआशी दबाव विझी जंग ख़तम करण ते मजबूर कंदासीं। जल्द अबनाए हुर्मस खे अमरीकी इलाइक़ो करार ॾियण जो बि ऐलान कंदुसि। व्हाइट हाउस अबनाए हुर्मस बाबति सदर ट्रंप जे बयान खे मज़ाक करार ॾेई छॾियो। अमरीका सां ॻाल्हियुनि जी बहालीअ जो फ़ैसिलो नाहे कयो। पैगामनि जी ॾे वटि ॻाल्हियूं नाहिनि हूंदियूं। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राख़्ची चयो त इस्लामाबाद मफ़ाहमत नामे में जंग बंदी न पर जंग जे ख़ात्मे जी ॻाल्हि थी हुई, जंहिंजी अमरीका भंजे कड़ी कई। अमरीका सां राब्तनि लाइ पहिरीं वारा राब्ता हाणे मौसर न रहिया आहिनि। तहरान अमरीका सां राब्तनि लाइ वक़्ती रस्तो तयार करे रहियो आहे, जेको बाद में मुस्तक़िल रस्तो बि थी सघे थो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो, डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन्हनि में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین
8: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
4: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
8: 0331252578 6
4: جی ہاں بڑی 231525786
8: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
4: سندھ جو آواز

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
5: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
6: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज
7: तो माइनॉरिटी ऐं मेजोरिटी में छा फ़र्क़ु हूंदो? माइनर हुनखे ई चयो वेंदो आहे जेको 18 खां हेठि हुजे। टीं असां ॻाल्हि चवंदा वार्ड। हाणे ॿुधण वारा इहो ॿुधंदा त पोइ माइनर ऐं वार्ड में छा फ़र्क़ु
8: आहे, छा डिफ़रेंस आहे?
7: माइनर ऐं वार्ड में सिर्फ़ इहो फ़र्क़ु आहे की वार्ड उहो हूंदो आहे जंहिंजे लाइ असां कस्टडी वठण आया
8: आहियूं
7: कोर्ट खां सीख कयूं था, ठीक आहे, कहिड़े बि तरीक़े सां, चाहे पोइ असांखे डिजिटल तरीक़े सां मिले, डिफेक्टो तरीक़े सां मिले, टेस्टामेंट्री तरीक़े सां मिले या नेचुरली मिले, जंहिं ॾींहुं असां गार्डियनशिप सीख कयूं था ऐं उन जी प्रॉपर्टी जो बि लुक आफ्टर कंदासीं, त अगरि कंहिंखे असां गार्डियन अपॉइंट था कयूं उनजी प्रॉपर्टी जी बि लुक आफ्टर करे ऐं हुन नंढे मासूम ॿार जी बि लुक आफ्टर करण खे असां छा चवंदा आहियूं वार्ड
8: वार्ड
7: ऐं गार्डियन असां हुनखे चवंदा आहियूं जेको उन ॿार जी सार संभाल लहण जी ज़िमेदारी खणे,
8: ठीक आहे,
7: चाहे पोइ हुनखे कोर्ट अपॉइंट करे, चाहे उहो नेचुरली तरीक़े सां अचे या उनजो को क्लोज रिलेटिव या नेक्स्ट कोई बि फ्रेंड या गार्डियन थी सघे थो, देट इज़ कॉल्ड गार्डियन।
8: मींस ॿार जी वेलफेयर करे पियो माइनर जी या वार्ड जी, गार्डियन असां
7: गार्डियन में ईअं त ॾिसो न, हुनजी ईअं सम्झो त हुनजी कस्टडी बि हुनखे ॾिनी वेंदी, हुनजी प्रॉपर्टी जी कस्टडी बि हुनखे ॾिनी वेंदी जेकी हुनजे पेरेंट्स जे थ्रू हुनखे मिले थी पई, या अगरि ऑर्फनेज आहे या हुनजे विरासत में कुझु अचे थो पियो उहा शइ, त गार्डियन कोर्ट अपॉइंट कंदी आहे, उहो हुनजी सॼी सार संभाल लहंदो, बल्कि हुनजी पूरी वेलफेयर ताईं हुन सां गॾु हूंदो जेसि ताईं उहो ॿार 18 सालनि जो नथो थी सघे या पाण बालिग नथो थी वञे।
8: ऑल राइट, सो सर असां गार्डियन ते अचूं त इन जूं जेके आहिनि त कहिड़ियूं जेके आहिनि त काइंड्स आहिनि जंहिं डिफेक्टो गार्डियन थी सघनि था, डी जोर एज वेल एज नेचुरल गार्डियंस थियनि पिया, त उन ते थोरो असां
7: फोर काइंड्स उन खां बि इलाही थी सघनि, पर एज पर गार्डियन एक्ट जे हिसाब सां फोर काइंड्स ऑफ जेका न गार्डियनशिप हूंदी आहे। सभ खां पहिरियों हूंदी आहे तव्हांजा नेचुरल गार्डियंस। नेचुरल गार्डियंस उहे हूंदा आहिनि जेके बायोलॉजिकली असांखे अलाह जी तरफ़ा द गिफ्ट ऑफ द गॉड चवंदा आहिनि, जेके पीउ मां मदर एंड फादर नेचुरल गार्डियन, ठीक आहे, ॾाॾो ॾाॾी त अञा वेझो ई नेचुरल गार्डियन थी आहे छोकी उहो बायोलॉजिकल गार्डियन असांजा, असां हुनखे नेचुरल गार्डियन चऊं,
8: ठीकु आहे,
7: ठीकु आहे। अगरि मिसाल सपोज ॿिन्हिनि मां को हिकिड़ो फौत थो थी वञे त उनजो जेको वेरी नेक्स्ट गार्डियन हूंदो हुनजी मदर हूंदी, अगरि मदर फोत थी वञे त हुनजो फादर हूंदो, अगरि ॿिन्हिनि मां ई कोई फोत थो थी वञे त नेक्स्ट गार्डियन हुनजो ॾाॾो हूंदो
8: ऐं
7: ॾाॾी हूंदी। नेचुरल गार्डियन छो त उनजो छा आहे त क्लोज़न ऐं ब्लड लाइन सां तालुक रखनि था पिया, देयर फॉर दीज आर कॉल्ड द नेचुरल गार्डियंस। पोइ तव्हां थींदा आहिनि डिफेक्टो गार्डियन, सपोज़ हिननि मां कोई बि न आहे त चाचो मामो,
8: ओके,
7: सपोज अगरि उहो नंढो ॿार आहे त हुनजो सोट थी सघे थो, हुनजो भाउ थी सघे थो, इवन हुनजी सिस्टर थी सघे थी। सपोज कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे की अगरि मदर जी फादर जी ॿी शादी थियल हुजे त हुनजी जेकी सेकेंड मदर आहे स्टेप मदर
8: उहो
7: बि डिफेक्टो में अची सघे थी। मक़सद इहो आहे त ॿार जी वेलफेयर खे ॾिसणो पवंदो, ॿार खे ॿार जी सही संभाल माना ॿार जी नरिशमेंट नर्चर ऐं नेचर ॿिनि ॿार जी जेकी न सुठे तरीक़े सां थिए, जेके असां नवरिशमेंट चवंदा आहियूं, पेट्रोनिक चवंदा, सरपरस्ती ॿार जी सुठी थी सघे, हुनखे चवंदा आहिनि डिफेक्टो। हुन में कोर्ट जी परमिशन जी वठण जी ज़रूरत न आहे, उहो पाण बि कस्टोडियन थी सघनि था। देन तव्हांजा अथनि डिजोर, डिजोर जो पर्पज़ ई सिर्फ़ इहो आहे त हिन में कोर्ट ही अपॉइंट कंदी कि हे माण्हू हिन ॿार जे लाइ तमामु बहितरीन कस्टोडियन ऐं गार्डियन साबित थी सघंदो, ठीक है उन्हें असां चवंदा डिजो जेकी कोर्ट अपॉइंट
8: जी जी जी
7: देन देयर कम्स अ टेस्टामेंट्री गार्डियन टेस्टामेंट्री गार्डियन इन्हें मतलब आ के अ पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द डिसीज पेरेंट या डिसीज नेचुरल गार्डियन के मुझी फोत थियण खां पो जेको फलाणो कंसर्न आ चाहे उनमें चाचो थी सके तो उनमें भा थी सके तो उनमें मदर थी सके थी सपोज डाडो थी सके तो पी पंहिंजी हयाती में इहो विल लिखाए वञे हिन खे असां टेस्टीमेंट्री टेस्टामेंट्री चवंदा आहियूं माना विल जे थ्रू के इंस्ट्रूमेंट जे थ्रू डिक्लेयर करे वञे त सपोज शहबाज़ ऐं सपोज बाबर या सपोज कोई बि मुंहिंजे ॿार जो हे ईंदड़ टाइम में जेको आहे न गार्डियन थींदो मुंहिंजे बिहाफ ते हुन लाइ असां हिकिड़ो टर्म इस्तेमालु कंदा पॉज़िटिव सेंस सां हिकिड़ो यूरोप में हिकिड़ो लफ़्ज़ इस्तेमालु थींदो आहे ख़ासि करे हिकिड़ी अमेरिकन सोसाइटी में हिकिड़ो लफ़्ज़ इस्तेमालु थींदो आहे द गॉड फादर
8: All right.
7: त हुनजो पोयां जेको सरपरस्त थी करे हुनजो पोयां को गॉड फादर हुजे गॉड फादर जो मतिलबु आहे सार संभाल
8: सार संभाल
7: हुनजे ॿार जेको पीउ जे माउ जे मरण खां पोइ या हुननि जी अगरि सपोज डाइवोर्स थी वई आहे या हालात इलाही ख़राब थी विया आहिनि ॿार ॿिन्हिनि ॾींहंनि सां वञणु चाहे थो की हुनजा हिकिड़ा मेंटल ऐं फिज़िकल सिचुएशन ॿार जी नाहे उहो थी सघे थो ॿार अञा उहो सुठी परवरिश न मिली सघे त हुन सिचुएशन में गॉड फादर अपॉइंट थींदा आहिनि की माना असां हिनजे ॿार जी संभाल असां हलंदा दीस आर द फोर काइंड्स ऑफ
8: जी तव्हां टेस्टामेंट्री चयो गार्डियन हिन में ईअं आहे त मिसाल को लेट सपोज कंहिं फादर जेको आहे हुनखे ख़बर हूंदी आहे त हाणे मुंहिंजो जेको आहे त वक़्तु क़रीब आहे डेथ करण वारो आहे त हुन खां पहिरियों पंहिंजी विल लिखी छॾंदो आहे त यार मुंहिंजे चिल्ड्रन जी जेका आहे हीउ वेलफेयर कंदा या हुनजी जेकी आहे उहो कंदो ईअं चई सघूं
7: चई सघो था अगरि हिन में इहो चइजे त पंहिंजी हयाती में बि हयाती में बि डिक्लेयर करे सघंदा पर थ्रू विल वालिद पंहिंजी हयाती में या मदर पंहिंजी हयाती
8: मदर बि करे सघे
7: नालो जो लव पेरेंट पेरेंट जो मक़सदु इहो हूंदो आहे मज़ो न हूंदो त फादर ई हुजे पेरेंट्स माना ॿिन ॿ शयूं माना फादर ऐं मदर मिलंदा त पेरेंट्स वटि रहंदा त ॿिन्हिनि मां कोई बि डिक्लेयर करे सघे थो मुंहिंजे मरण खां पोइ मुंहिंजे ॿार जी परवरिश हिन जे हवाले ऐं मुंहिंजी तरफ़ां जेकी बि प्रोपर्टी लेफ्ट थी आहे जेकी ॿार ॾे वेंदी ट्रांसफर थींदी उन जी बि सार संभाल हे लहंदो मां हिकिड़ो मिसाल ॾियां तमामु तमामु बहितरीन अगरि असांजा ॿुधण वारनि मां बि कुझु अहिड़ा हूंदा मूंखे उमेद हूंदी के उहे डीसी कॉमिक्स खां वॾो या बैटमैन खां जेको आहे न अवेयर हूंदा हुन में हिकिड़ो रोल हूंदो आहे बटलर जो ब्रूस वेन वॾो मशहूरु करेक्टर आहे बेसिकली जेको बैटमैन आहे हुनजो अल्टर ईगो ब्रूस वेन आहे ब्रूस वेन जो अल्टर ईगो बैटमैन आहे
8: ठीकु आहे
7: त जॾहिं हू कंहिं बि तरीक़े सां या कुझु बि हालात ख़राब थी वेंदा आहिनि गोथम सिटी में त हुनजा पेरेंट्स मारिजी वेंदा आहिनि जॾहिं पेरेंट्स मारिजी वेंदा आहिनि त जेको बटलर हूंदो आहे उहो बैटमैन जी प्रॉपर्टी खां वठी करे बैटमैन जी एजुकेशन खां वठी करे ब्रूस वेन जी एजुकेशन खां वठी करे जेसि ताईं हू पाण अची करे एडल्ट नथो थिए त हुनजो बटलर ई सॼी सिचुएशन सॼी हुनखे इहे संभालींदो आहे त इन में इहे सम्झो त बाए डिफेक्ट बि थी वियो डिफेक्टो बि थी वियो डिफेक्टो बि थी वियो डिज्योर बि थी वियो ऐं टेस्टामेंट्री गार्डियन बि थी वियो माना इन में उहो बटलर ही प्लेज़ द रोल ऑफ फादर मदर टीचर ऐं उन जो गार्डियन सॼो जो सॼो उहो रोल प्ले थो करे वॾो मिसाल आहे अगरि असांजे ॿुधण वारनि खे
8: सुठो
7: लॻो सम्झी विया हूंदा
8: अच्छा सर हीउ जेको आहे त गार्डियन अपॉइंट केरु कंदो आहे
7: गार्डियन अपॉइंट करण जे लाइ पहिरों त मां तव्हांखे डिफेक्टो कोई बि थी
8: सघे
7: कॾहिं कॾहिं छा हूंदो आहे त असां कोर्ट जे थ्रू परमिशन वठंदा त वी वॉन्ट टू बी द गार्डियन ऑफ दैट पर्सन मिसाल कुझु केसिस अहिड़ा हूंदा आहिनि की प्रॉपर्टी इलाही वारसनि ते मुश्तमिल हूंदी आहे कुझु माइनर्स हूंदा आहिनि कुझु मेजर हूंदा आहिनि त सपोज अगरि मां बैंक जो ई मिसाल वठां अगरि वार्ड जी असां प्रॉपर्टी जो ज़िक्र वठूं त ॿिनि क़िस्मनि जी प्रॉपर्टी थींदी आहे हिकिड़ी इमोबल प्रॉपर्टी थींदी आहे हिकिड़ी
8: इमोबल
7: प्रॉपर्टी थींदी आहे सो इमोबल प्रॉपर्टी मां तव्हांखे ख़बर आहे घर लैंड हूंदो कोई बि प्लॉट हूंदो हुनजी लुक आफ्टर ॿार जी करणी आहे वठणी आहे असांखे किथे मिसयूस न थी वञे या सेल आउट न थी वञे या मॉर्गेज ते न हली वञे या कोई पंहिंजे फ़ाइदे जा हिनखे रेंट आउट ते न ॾेई छॾे सो ॿियूं हूंदियूं आहिनि मूवेबल प्रॉपर्टी जंहिंमें तव्हांजा बैंक्स थी वेंदियूं आहिनि तव्हांजी ज्वेलरी थी वेंदी आहे तव्हांजा बॉन्ड्स थी वेंदा आहिनि ऐं उहे बॉन्ड सपोज लखनि में करोड़नि में आहिनि त लॻे ॿार नंढा आहिनि त हुनजी वेलफेयर जे लाइ कुझु न कोई त गाॾी न पॉइंट थियणु खपे सो कोर्ट में कोई बि माइनर जे लाइ वञी करे पंहिंजी गाॾी

0: ॿिनि खानदाननि खां बि वधीक जेकी सेपरेशन थींदी आहे उहो ॿारनि जी
1: ॿार जी थींदी आहे।
0: जेको ॿार सफ़र कंदो आहे मेंटली या फिज़िकली, जेको ॿार डिस्टर्ब थींदो आहे, उहा कंडीशन असां हर ॾींहुं कोर्ट में ॾिसूं था। फैमिली कोर्ट भरी पई
1: आहे,
0: जेके असां वार्ड कोर्ट चऊं, भरी पई आहे हर ॾींहुं। एतिरी कंडीशन वर्स्ट हूंदी आहे जो ॿार अगरि पंहिंजे पीउ सां मिलण अचनि था या माउ सां मिलण अचनि था, हुन ॿिनि कलाकनि में असां हुन जा जज़्बात निकरंदे ॾिसंदा।
1: अच्छा अच्छा।
0: असां ॿारनि खे रोईंदे ॾिसंदा आहियूं, असां पेरेंट्स खे रोईंदे ॾिसंदा आहियूं, मदर खे रोईंदे ॾिसंदा आहियूं, ॾाॾनि खे रोईंदे ॾिसंदा आहियूं। कुझु कंडीशन अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जो ॿारनि खे एतिरी त शदीद नफ़रत हूंदी आहे पीउ खां, त पीउ जी शकल ॾिसण बि पसंदि न कंदा आहिनि। कुझु वर्स कंडीशन अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जो मदर खां वधीक केरु आहे, ठीकु आहे न, मदर जी जेकी गोद आहे उहा त हिकिड़े क़िस्म सां त यूनिवर्सल शेल्टर आहे, माउ जो यूनिवर्सल शेल्टर आहे बचे जे लाइ। पर उहा कंडीशन बि ॾिठी आहे जो ॿारनि जेके अठनि नवनि सालनि जा या मेच्योर थियनि था थोरा, उन्हनि दरवाज़े ते घेरंदे ई कोर्ट में चयो असांखे पंहिंजी माउ जी शकल ई न आहे ॾिसणी। एॾी को कंडीशन वर्स सां करे छॾनि फैमिलीज़ पाण में मिली करे, त हुनजो अल्टीमेट जेको नुक़सान थिए थो उहो ॿारनि ते थो थिए पियो। ॿार पुछा था थवनि त असां न पीउ ॾे वेंदासीं न माउ ॾे वेंदासीं, त ॿार पोइ हिकिड़ो नयो रस्तो ॻोल्हींदा आहिनि जेके असां चवंदा आहियूं या ॾाॾो या ॾाॾी या नानो या नानी।
1: ओके,
0: ठीकु आहे। त असां हिननि ॾे वञणु पसंदि कंदासीं। एतिरी कंडीशन बि ईंदी आहे त ॿार चवंदा असांखे ऑर्फिनेज मोकिले छॾो, असां हेॾे न वेंदासीं, असां हेॾे न वेंदासीं, पीउ माउ ॾे न वेंदासीं, छो त असां बर्दाश्त नथा करे सघूं त असांजा अधु पेर पीउ ॾे पियो हुजे, अधु पेर माउ जे घर में पियो हुजे, छोकी ॿार जी ज़हनी तवाज़ुन जो करे डिस्टर्ब थो थिए पियो ॾाढो।
1: अच्छा, हिन ते तव्हां हुननि पेरेंट्स खे छा जेको
0: आहे तव्हांखे जीअं मां शुरूआत हिन सवाल जी जीअं शुरूआत कई त अलाह खे नापसंदीदा अमल आहे तलाक ऐं सेपरेशन। मुंहिंजी सलाह इहा आहे त असां इन खां बि अॻु में पहिरियों बि हज़ार दफ़ा मां ॿुधाए चुको आहियां हिन तव्हांजे मीडियम जे थ्रू, ऐं पाण हिन ते हिकु न ॿ दफ़ा प्रोग्राम करे चुको आहियां अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन जो। जॾहिं बि अगरि अहिड़ी को सिचुएशन क्रिएट थिए त मां इहा ई सलाह ॾींदुमि त घर जा जेके वॾा भाती आहिनि, दे मस्ट प्ले द रोल ऑफ द मीडिएटर, इन मसइले खे रिज़ोल्व करनि।
1: अच्छा, हिते अमूमन इहे ॻाल्हियूं चई वेंदियूं आहिनि बाबा तव्हांजो ज़ाल मुड़ुस जो पंहिंजो आहे, चकर तव्हां असांखे विच में न आणियो, हिते कंहिंजो कसूर आहे?
0: इहो आहे बेसिकली सिचुएशन खां भॼण,
1: जस्ट वर्ड्स हुननि खे चईंदा असांजो वास्तो न आहे, तव्हां पाण में ज़ाल मुड़ुस आहियो, जंहिं वजह सां कंडीशन अञा वर्स्ट थींदी वेंदी आहे, हुननि जा अञा जहिड़ा वधंदा वेंदा आहिनि।
0: मां मौला रसूल पाक सलाहु वसलम जी हिकड़ी हदीस ॿुधी हुई, मस्जिद में वेठो, हिकड़ी सुठी ॻाल्हि मूंखे वणी। जॾहिं मौला हज़रत अली खे जॾहिं चवंदा आहिनि की अली सुम्हण खां अॻु में ॿिनि माण्हुनि जे विच में दरमियान में फैसलो कराए सुम्हजांइ,
1: त
0: इहे बि माना हिकड़े क़िस्म सां तुंहिंजे माना अॻिते वञण जा माना ईअं सम्झो माना तुंहिंजे बुलंदी जा माना अञा वधीक बुलंद मक़ाम ते पुॼण जा बि हिकिड़ा ज़रिया आहिनि की अली ॿिनि माण्हुनि जे विच में सलाह करे सुम्हजांइ। त इन मां अगरि मां नंढड़ो मिसाल वठां, हदीस त इलाही वॾी आहे, हुन में कलम ज़ोन में क़ुरान पढ़ण जो बि ज़िक्र आहे, उन में पंहिंजो हे ॿिनि माण्हुनि जे विच में या ॿिनि धुरियुनि जे विच में सलाह करण जो बि ज़िक्र आहे, हदीस तमामु वॾी आहे, नंढड़ो टुकड़ो थो ॿुधायां। त इन मां मुराद छा आहे की अलाह ऐं रसूल खे इहो अमल एॾो पसंदि आहे की कोई माण्हू ॿिनि धुरियुनि खे पाण में ठाहे। ॿिनि धुरियुनि खे ठाहिण जो मतिलबु ॿिनि फैमिलीज़ खे ठाहिण, ॿिनि फैमिलीज़ खे ठाहिण जो मक़सदु आहे लाज़मी आहे त अगरि जहिड़ा न थींदा सुभाणे हिन में ग़लति कम न थींदा, थी सघे थो जहिड़नि जे करे हालात ख़राब थी वेंदा आहिनि, फैमिलीज़ पाण में विढ़ी वेंदियूं आहिनि, जहिड़ा बि थींदा आहिनि, फुदगियूं बि थी वेंदियूं आहिनि, मार कुट ते बि माण्हू हलिया वेंदा
1: आहिनि। बिल्कुलु,
0: ज़रूरत पवे त अगरि कंहिंखे ज़रूरत पए इंटरफेरेंस करण जी त उहो इंटरफेरेंस करे, त जीअं ॿ घर तबाह न थियनि, ॿ फैमिलीज़ तबाह न थियनि, जीअं उन जे ॿार बचनि जेको नुक़सान न अचे, ऐं उहे हिकड़ी सुठी ऐं पीसफुल ज़िंदगी पंहिंजे अॻिते सफ़र गुज़ारे सघनि।
1: सो देट मीन्स तव्हां हुननि खे इहो ई मैसेज ॾींदा, स्पेशली जेके वॾा आहिनि त उहे गैर ज़िमेवार न थियनि, ज़िमेवारी खां भॼनि न, ऐं जेको आहे न पंहिंजो किरदारु अदा
0: करनि। शादियुनि ताईं शादियुनि में मौजूदु आहियो, मेहंदियुनि में मौजूदु आहियो, ढोलकियुनि में मौजूदु आहियो, हर शइ में। जॾहिं ॻाल्हि अचे थी हिननि खे सेटल करण जी, असांजो कमु न वञे, असांजो कमु न वञे, इहा देट इज़ अ बेड थिंग, कमु न वञे, हिते तव्हांजो कमु आहे, देट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। शादी कराइण बि तव्हांजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, त शादीअ जे अंदरि थींदड़ जेके इशूज़ आहिनि उनखे रिज़ोल्व करण बि तव्हांजो।
1: यस यस। सो बिल्कुलु प्रोग्राम जारी आहे, हींअर असां हलंदासीं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ॾांहुं, असां सां गॾु रहिजो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: GA FM 88 नेटवर्क, सिंध किया।

0: साबर से तव्हां सां गॾु आहे ऐं एडवोकेट शहबाज हफ़ीज़ साहब असां सां गॾु मौजूद आहिनि। असां जो अॼु जो टॉपिक आहे गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 कंदासीं। शहबाज साहब, हाणे असां ॻाल्हि कई त अपॉइंट जेको आहे गार्डियंस खे केयर करे पियो, तव्हां चार काइंड्स बि ॿुधायूं, डिफेक्टो, डीज्योर, टेस्टामेंट्री ऐं चोथी कहिड़ी ॿुधाई था,
1: नेचुरल
0: गार्डियंस। सो क्वालिफिकेशन हिन जूं छा हुजणु घुर्जनि, हिननि गार्डियंस में कहिड़ियूं अहिड़ियूं ख़ासियतूं हुजणु घुर्जनि जेके उहे बतौर गार्डियन माइनर जा थियनि थी सघनि जी।
1: वेरी गुड क्वेश्चन बाबा, छो कि जॾहिं बि असां फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन दाख़िल कराईंदा आहियूं, चार खां पंज शयूं आहिनि जेके कोर्ट पंहिंजे अंदरि सुपरविजन में रखंदी आहे। अगरि उन्हनि ॻाल्हियुनि ते अगरि कोई बि एप्लीकेशन ॾियण वारो जेको क्लेम थो करे आई वॉन्ट टू बी द गार्डियन ऑफ दैट माइनर, उनमें कोर्ट इहे पंज छह शयूं ॾिसंदी। सभ खां पहिरियों कि उहो इल टेम्पर्ड न हुजे, बद अख़लाक, बद मिज़ाज न हुजे। ॿियो, गुड करेक्टर्स हुजनि, ठीकु आहे। टियों, हुन जो को सेल्फ इंट्रस्ट न हुजे। सेल्फ इंट्रस्ट ईअं हूंदो आहे की अगरि सपोज एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, वेदर मूवेबल आहे, रिमूवेबल हैज़ बीन लेफ्ट बाय द पेरेंट ऑफ द माइनर, ठीकु आहे, ऐं उहा प्रॉपर्टी ते हुनजी नज़र न हुजे। ठीक, सपोज जीअं मां तव्हांखे मिसाल ॾियां, अगरि रिमूवेबल प्रॉपर्टी आहे त हुन में तव्हांजा घर बि थी वियो, तव्हांजो प्लॉट बि थी वियो, तव्हांजी एग्रीकल्चर लैंड बि थी वियो। मूवेबल प्रॉपर्टी इहा हूंदी आहे त सपोज किथे ज्वेलरी पई हूंदी आहे, किथे अकाउंट में पैसा पिया हूंदा आहिनि, किथे बोन जी शकल में पवंदे, छा हुन जी हुन ते ईविल आई त न आहे, बुरी नज़र त न आहे। सपोज को अहिड़ो घर आहे, हुनजी गार्डियनशिप वठे थो पियो, गार्डियनशिप वठण खां पोइ ॿार खे त पाण सां राए छॾी, पर घर किराए ते ॾेई छॾी, हुन मां जेको बि कुझु मिले थो उहो पाण वटि रखे थो। या अहिड़ो प्लॉट आहे, उहो लाइसेंस ऐं लीज़ ते त न ॾेई छॾी, हिन खे तव्हां हली टेम्परेरी यूस कयो, हुन मां जेको बेनिफिट मिले उहो पाण वटि
0: पाण थो वठे,
1: ठीकु। ऐं हुन खां पोइ इहो आहे के उन में कैपेसिटी ऑफ माइंड, मतिलब कहिड़े बि क़िस्म जी हुन में मेंटल डिसेबिलिटी न हुजे, पंहिंजो डिसीशन्स वठी सघे, जेके ॿार जे बि हक़ में सुठा डिसीशन्स हुजनि ऐं ॿार जी बि वेलफेयर में हुनखे फ़ाइदो ॾेई छॾनि। छो कि पंज खां छह ॻाल्हियूं इहे आहिनि कि मां थोरो शॉर्ट में तकड़ में रिपीट कर, ही शुड नॉट बी इल टेम्पर्ड, हुनखे इनकेपेसिटी ऑफ माइंड न हुजे,
0: सही आहे,
1: ही शुड हैव नॉट सेल्फ इंट्रस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर, ठीकु आहे, ऐं प्लस में बेड करेक्टर जो न हुजे ऐं सुठे इख़लाक जो हुजे जेको ॿार जी वेलफेयर में मदद ॾिए। दीस क्वालिटीज़ आर टेकन अंडर सुपरविजन या टेकन अंडर आईस ऑफ द कोर्ट, कोर्ट विल कंसीडर इट। जॾहिं कोर्ट कंसीडर कंदी, हुन खां पोइ वञी करे हुनखे एज़ अ गार्डियन अपॉइंट कंदी।
0: ऐं गार्डियन जी ड्यूटीज़ कहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि, मतिलबु हू छा जेको आहे माइनर जी जेका कहिड़ी क़िस्म जी वेलफेयर थो करे?
1: गार्डियन जी ड्यूटीज़ सभ खां पहिरियों, बल्कि गार्डियन जी अगरि ॾिठो वञे, अंडर गार्डियनशिप एक्ट में ॾिठो वञे त गार्डियन जी टे ड्यूटी, बेसिक टे ड्यूटीज़ लिकल आहिनि सेक्शन में, त टे लिकल आहिनि, हुनखे तव्हां इलाही वधाए सघो था या मल्टी हुन में खणी वञी सघो था एरियाज में। सभ खां पहिरीं आहे स्कूलिंग, ॿार जी स्कूलिंग बंदि थियणु खपे। ॿियो आहे ॿार जी हेल्थ, ॿार जी जेकी नरिशमेंट आहे, ॿार जी जेकी नर्चरिंग आहे, ऐं ॿार जी जेकी नेचर ते को फ़र्क़ु न अचे, मुंहिंजी हेल्थ सुठी हुजे। टियों आहे मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मतिलबु ॿार खे टाइमली खाधो बि सुठो मिले, रहण बि सुठो हुजे, ऐं ॿार जा विज़िटेशन बि थींदा रहनि, ॿारनि जूं शादियूं, फोतियूं, गमियूं, शादियूं, मुरादूं, जेको असां लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदा आहियूं पंहिंजी सिंधी लैंग्वेज में, उहा ॿार जी प्रॉपर तरीक़े सां थींदियूं रहनि। इहा बेसिक जेके ड्यूटीज़ आहिनि कंहिं बि गार्डियन जी, की जेसिताईं उहो 18 साल जी एज ते नथो पुॼे, तेसिताईं उहो लुक आफ्टर करणु हुन जो फर्ज़ आहे।
0: ऑल राइट, मतिलब इहे टे तव्हां चओ था बेसिक ड्यूटीज़ एंड गार्डियन्स जो। ऑल राइट सर, डाइवोर्स ते अगरि असां अचूं पिया, पेरेंट्स में विच में ख़ुदा न ख़ासि सां डाइवोर्स बि थी वञे, ऐं जेका आहे त माइनर जी कस्टडी मदर वटि पई अची वञे, त जेको फादर आहे हुनखे कीअं विज़िटेशन मिली सघे थी, या हुनखे अलो आहे या नाहे?
1: हा, वेरी गुड क्वेश्चन बाबा, हिनखे असां चवंदा आहियूं विज़िटेशन राइट।
0: ओके,
1: फैमिली लॉ में विज़िटेशन राइट चओ
0: ॾिनो वियो आहे,
1: गार्डियन में जो ज़िक्र आहे विज़िटेशन राइट आहे। गार्डियन विज़िटेशन जो राइट जो पर्पज़ इहो आहे की पी मां सेपरेट थी विया
0: आहिनि
1: या पी मां फोत थी विया आहिनि, मुंहिंजा नेचुरल गार्डियन बि फोत थी विया आहिनि, त कस्टडी ॿिए कंहिं वटि वञे थी पई। उन टाइम में अगरि सपोज कोई ॿार जो ई क्लोज़ रिलेटिव चए थो बाबा जंहिं वटि कस्टडी आहे, जंहिं वटि जेको मुंहिंजो गार्डियन अपॉइंट थियो आहे, असांखे ॿार खे असां मिलणु ॾिनो वञे, छो की उहो हाली टेम्परेरी कस्टोडियन आहे।
0: ठीकु आहे,
1: ठीकु आहे, त असांखे इहा ख़बर पई आहे त असांजो जेको ॿार आहे हुन जी जेकी न जेकी वेलफेयर आहे उहो सही नथी
0: थिए, ठीकु आहे,
1: काइंडली असांखे ॿार सां मिलणु ॾिनो वञे। पोइ हुन में इहो छा थींदो आहे त अगरि सेपरेटिड आहिनि, डाइवोर्स्ड आहिनि, ॿार हाली यकदमि माउ खणी वई पाण सां गॾु, पीउ खे न ॾिनई, पीउ एप्लीकेशन ॾींदो, पेरेंट एप्लीकेशन, फादर एप्लीकेशन ॾींदो त मुंहिंजे ॿार खे मूंसां मिलणु ॾिनो वञे।
0: ओके,
1: अगरि ॿार पेरेंट वटि रहिजी विया आहिनि, माँ के कढ़ी छे अतन माँ के या वालदा के कड़े भी सिचुएशन बारह सिचुएशन का उनके बेदखल कर छन या उनके सपोज डाइवोर्स मिली वही तो वो लेडी अगर चाहे तो कोर्ट में एप्लीकेशन दई कर विजिटेशन राइट जो हक वी
0: okay.
1: सपोज अगर गुजारे वही अगर
0: जी
1: लेडी गुजारे वही बार जहाँ नाना नानी जिंदा तो नाना नानी भी उनको विजिटेशन जो राइट हक वी वाकई असो डोटो आसो पोटो आ वाकई सुठी कंडीशन से आए या ना तो उन सिचुएशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है 2018 की उनमें सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चवे थी पी तो कोर्ट के एकड़ो टेम्पररी ऑर्डर भी इशू करण अलो भी करणो आ प्लस में उनके मुलाकात करण की इजाजत भी देनी है पूरा जो पूरा शेड्यूल ठाए देणो आ हफ्ते में सपोज शेड्यूल ये हफ्ते में बी बार पी वट रह हफ्ते जो टे ढी पे माँ वट रह ईद उल अज़हा की अगर डी अचन था पा तो अगर 15 रमजान पे पी माँ वट रह 15 रमजान पे
0: ईद
1: जो टे ढीन तो ईद जो चंड रात का वी ईद के बे ढी तीन पी वट रह वही बे ढी का वी ईद के टे ढी ती माँ मदर से रह अगर स्कूलिंग आ स्कूलिंग की फीस वगैरह जी भी होंगी वह पेरेंट भर
0: ठीक है
1: उनके अलावा अगर बार पे पी डे वन चाहे तो सुबह जो 8 बजे का वी कर शाम जो 5 बजे तक वो पेंे पी वट वही तो शाम का बाद में पेंी वालदा तो कोर्ट यो करो पूरा शेड्यूल ठा दिनो तो इन सिचुएशन के बार के तेजे हस्बैंड का मिलाय पर असा सिचुएशन कदें कदें इलाही केसेस अस भी हलया त घट परमिशन मिली है बाहर वन जी भी विजिटेशन थन्दन सब कोर्ट के अंदर थन्दन उत विजिटेशन वार्ड हाउस ठाया वह जैसे चिल्ड्रन हाउस चवन वार्ड मतलब माइनर बार नंढा मन उड़ा कमरा ठाया वह जाते बार खिलौना बार हर वह बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल होंगी जैमें अगर माइनर आ तो इंजॉय कर सके पेरेंट्स कोर्ट की तरफा मिसाल सपोज 12 बजे का 2 बजे तीन या सुबह जो 9 बजे का 12 बजे तीन टाइम मुकर्र हूं उन दौरान तेजे बार शूं कपड़ा खिलौना वी कर पेरेंट्स बाद में जो टाइम ओवर थी वो पेंे पेरेंट्स से खी हलिया वा सो विजिटेशन राइट जो पर्पज ही होंगे टू लुक आफ्ट टू लुक एट दैट द माइनर इज बींग ट्रीटेड वेल और नॉट बार पेंी लाइफ के सही इंजॉय करे तो वेल मैनर्ड है वेल मेंटेन्ड है बस पर्पज इन जो ये होंगे त
0: अच्छा इन सर एक बो क्वेश्चन मुझे जहन में अचे पो तो डाइवोर्स का बाद में जो या डाइवोर्स चलो बाद में अचूँ केंजी हस्बैंड फादर या मदर जो अगर डेथ थी वे मदर वटे बार रहल है माइनर रहल है बी शादी पी कर वे ठीक है तो सोतेलो पी उन सही तरह वेलफेयर को इन सिचुएशन में माइनर के उन वालदा वटे कस्टडी रही सके थी या उन कोर्ट जो डिसाइड कन्दी तो कस्टोडियन बो थे
1: यो डिपेंड करे तो सपोज अगर छोकरी
0: Okay.
1: अगर छोकरी आ वह मेजर आ तो वह गैर महरम आज सेकंड मदर गैर महरम आ अगर वह चाहे तो पेंे वालिद चाहे तो वह कस्टडी वापस वी तो अर्ली एज में
0: वालिद तो डेथ करे
1: वालिदो या उन चाचो उनकी कस्टडी वी तो बाबा हे न्याणी असा के परवरिश अस कदे बी सिचुएशन में जैसे कोर्ट कंसीडर करे थी पे जी अस बुधाया क्वालिटीज अस क्वालिटीज होजन खपन अगर कोर्ट कंसीडर करे थी ठीक है न इट इज ऑब्जर्विंग डेट अंडर द आई ऑफ द लॉ के अगर अस मदर आ उन बी शादी कई आ पर स्टिल वो उनकी सुठी परवरिश करे सके तो उनके कोर्ट के एतराज न होंद
0: अच्छा।
1: बाबा मदर राजी आ उनो जो सेकेंड हस्बैंड आ वो राजी आंकी न्याणी के पेंी न्याणी वागर रख तो अल्टीमेट पर्पज एक्ट जो टू वेलफेयर ऑफ द माइनर जैसे बार जैसे वो एडल्ट थे या एडल्ट उनका डिसीजन्स उनकी स्कूलिंग प्रोवाइड करन था पिया हेल्थ उनकी सुठी रखन था पिया उनकी चंदा यो मेंटेनेंस अगर बार की सुठी आ तो उनका बेस्ट ऑप्शन बार ला कुछ ना क्योंकि सोल पर्पज ऑफ दिस एक्ट इज फॉर द वेलफेयर बार के हर तकलीफ का बचाण बार के सुठी परवरिश देनी है द सोल पर्पज ऑफ दिस
0: जिते भी कस्टडी
1: दिखो वे अगर सपोज हाँ कैं धी शादी थी वही सेपरेट थी हाँ हस्बैंड जो वो करेक्टर ही न है हस्बैंड मोरल एक्टिविटीज में हस्बैंड जुआरी हस्बैंड शराब तो पिए पो हस्बैंड
0: सोर्स ऑफ
1: इनकम ही ना एज तव्हां खां हिकिड़ो जनरल सवाल थो कयां, सिटीज़न छा तव्हां हलो कंदो कंहिंखे?
0: न, बिल्कुल बि न कंदो।
1: भले नियाणी आहे, भले पीउ हुनजी धीउ आहे, बट द करेक्टर ऑफ द पर्सन इज़ सो बैड, वट काइंड ऑफ डिसीशन यू आर गोइंग टू टेक?
0: एग्जैक्टली नॉट।
1: तव्हां छा कंदो एट दैट सिचुएशन? तव्हां फेवर ई ॾींदो की बाबा लेट द माइनर बी रिमेन विद द मदर?
0: ओके,
1: अगरि हुनखे सुठो एनवायरमेंट मिले थो पियो, सुठो घर मिले थो पियो, सुठी स्कूलिंग मिले थी पई, that is a very good thing for the minor, ke ultimate sole purpose unjo serve to the
0: welfare the pai.
1: So that is the reason ke depend kare to the what kind of situations are there when the appointment of the guardianship is being considered.
0: All right sir. Sir, section 19 of the act jeko ta che un mein aaye the guardian jeko ta not appointed by the court, inhe ke thodo define kanda ta he section chapo che exactly.
1: हिन जो पर्पस, हिन सेक्शन जो पर्पस इहो आहे की हाणे लिकल आहे द गार्डियन नॉट अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, हिन जा सिर्फ़ चार इनक्रीडियंट आहिनि। सभ खां पहिरियों इहो आहे, सपोज की अगरि ॿार जेको वार्ड आहे हुनजी सॼी जी सॼी जेकी वेलफेयर आहे उहा स्टेट पाण थी खणे। स्टेट जो मतिलबु आहे कोर्ट, वार्ड कोर्ट उहा पाण थी खणे, हुनजी प्रॉपर्टी जी बि हुनजी पंहिंजी बि। त हिन सिचुएशन में नो नीड टू अपॉइंट द गार्डियन, छोकी कोर्ट पाण जी ज़िमेदारी खणे थो, हुनजी जेकी बि वेलफेयर आहे उहा कोर्ट जी ज़िमेदारी आहे। ठीकु आहे, देन ॿार एडल्ट, ॿार मेच्योर थी वियो आहे, वॾो थी वियो आहे, ॿार सोच समुझ वारो थी वियो आहे, पंहिंजी प्रॉपर्टी खे या पंहिंजे वाले साहब जी तरफ़ां, मदर जी तरफ़ां, फैमिली जी तरफ़ां अगरि उहो ज़िमेदारी पाण, डिसीशन्स पाण वठी सघे थो, त पोइ हुनजी गार्डियन अपॉइंट करण जी ज़रूरत न आहे। टियों इहो आहे की अगरि ईअं सम्झो की हिकड़ी नाबालिग नियाणी आहे, अंडर 15, अंडर 17, अमूमन तव्हां रूरल एरियाज़ में ॾिठा हूंदा अर्ली चाइल्ड मैरिज शादी जो कॉन्सेप्ट आहे, 15 सालनि में, 16 सालनि में ॿार शादी कराए छॾंदा, बट द पेरेंट्स हैज़ बीन सेपरेटेड या शी हैज़ बीन ऑर्फन, वीचारी यतीम थी वई आहे। त इन सिचुएशन में हुनजी शादी थी वई आहे, त अगरि हसबेंड उन करेक्टर्स से बीठल आहे जेके असां अर्ली में डिस्कशन कयासीं, त अगरि कोर्ट अपॉइंट कंदी त गार्डियंस जा करेक्टर कहिड़ा हुजनि, इल मैनर्ड न हुजे, मेंटली चैलेंज न हुजे, कोई डिसेबिलिटी न हुजेसि, कैपेसिटी ऑफ माइंड हुजेसि, माना सोच समुझ ज़िंदगी जा सुठा फैसला करंदड़
0: हुजे,
1: ठीकु आहे, ऐं सुठे इख़लाक जो हुजे, ठीकु आहे। त उन सिचुएशन में नो नीड टू अपॉइंट अनदर गार्डियन, जेको तुंहिंजो हसबैंड पाण ई कोर्ट समुझे थी, तुंहिंजो हसबैंड पाण ई बहितरीन गार्डियन आहे पंहिंजी वाइफ जे लाइ, त हिन सिचुएशन में कोर्ट गार्डियन अपॉइंट न कंदी आहे। चोथो पॉइंट इहो आहे बाबर, के ॿिन्हिनि मां कोई बि अगरि पेरेंट आहे, पेरेंट्स में ज़िक्र मां कयो, अगरि मदर आहे या मदर आहे या फादर आहे, ॿिन्हिनि मां कोई बि हयात आहे त हुनजा बेस्ट डिसीशन वठी सघे थो। अगरि फादर हयात आहे त मदर बेस्ट गार्डियन आहे, अगरि मदर न आहे त फादर इज़ द बेस्ट गार्डियन। सो दीस आर द फोर कंडीशन जंहिंजे विच में कोर्ट को नयो गार्डियन अपॉइंट नथी करे सघे।
0: ठीकु आहे, सो सर सेक्शन 20 जेको आहे त फिड्यूशरी रिलेशन ऑफ गार्डियंस टू वॉट आहे, एज़ वेल एज़ सेक्शन 25 बि आहे, इन ते तव्हां थोरो असांखे डिफाइन कंदा?
1: फिड्यूशरी जो मतिलबु आहे इतमादी रिलेशनशिप।
0: ऑल राइट,
1: इतमादी जो मक़सदु इहो आहे की कोर्ट कंहिं बि गार्डियन खे को प्रॉपर्टी सां रिलेटेड इशूज़ हुजनि कंहिंजी माइनर सां, हुन में काई बि ट्रांसेक्शन थिए थी, उहा ट्रांसेक्शन अल्टीमेट ॿार जे ई फेवर में हुजे। अगरि कोई मूवी प्रॉपर्टी आहे, कोई प्रॉपर्टी रेंट ते ॾिनल आहे या प्लॉट आहे, अगरि प्लॉट सेल आउट बि करणु चाहिनि था त परमिशन लाज़मी आहे, उहा परमिशन कोर्ट ई ॾींदी परमिशन, पर इहो ज़रूर ॾिसंदी त छा हुनजो बेनिफिट, हुन ट्रांसेक्शन जो बेनिफिट माइनर ताईं पुॼे थो। अगरि जो बेनिफिट माइनर ताईं पुॼे थो पियो ऐं उहो ॿार जे हक़ में ॻाल्हि वञे थी, त उन रिलेशन खे चवंदो आहे फिड्यूशरी रिलेशनशिप। माना कोई बि अहिड़ो ट्रांसेक्शन कहिड़े बि क़िस्म जो जेको घुमी फिरी ॿार खे ई फ़ाइदो ॾे, ठीकु आहे, ऐं उनजी जेतिरी बि वॉर्ड आहे, जेतिरी बि हुनजी प्रॉपर्टी आहे, उनजी लुक आफ्टर करे बहितरीन तरीक़े सां, उन पॉइंट खे असां चवंदा आहियूं फिड्यूशरी रिलेशनशिप, के गार्डियन उनजी हर हिकु पॉइंट, हर हिकु हुनजी प्रॉपर्टी खे ईअं लुक आफ्टर करे, ईअं ट्रांसेक्शन खे ॾिसे जे हो पंहिंजी ज़ाती ज़िंदगी में, पंहिंजी ज़ाती ज़िंदगी जा फ़ैसिला वठंदो आहे, पंहिंजी ज़ाती प्रॉपर्टी जा फ़ैसिला वठंदो आहे, ऐं जीअं ज़ाती अमल कबो आहे की हिन सां मूंखे फ़ाइदो पुॼंदो, उनजा सॼा डिसीशन ईअं हुजनि जो पंहिंजी ज़ाती ज़िंदगी जा फ़ैसिला वठी, पर अल्टीमेट फ़ाइदो कंहिंखे थिए? माइनर खे थिए।
0: ऑल राइट, सो सर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्चार्ज ऑफ गार्डियन अंडर सेक्शन 40, वॉट इज़ दिस?
1: तव्हां हिकिड़ो ॿियो 25 पुछियो मूंखां,
0: 25
1: सेक्शन 25, सेक्शन 25 खे अगरि असां डिफाइन कयूं, सेक्शन 25 जो मक़सदु इहो आहे की अगरि को पेरेंट या कोई बि लीगल गार्डियन नेचुरल हुजे या डिफेक्टो हुजे या टेस्टामेंट्री हुजे, अगरि उहो वठणु चाहे ॿार खां, के वट सपोज हिकड़ी टेम्पररी कस्टडी आहे जीअं अॻे पाण डिस्कशन टेम्पररी कस्टडी आहे अञा कोर्ट कंहिंखे ॾिनी न आहे अगर वो वठण चाहे तो हे बार जी जेकी कस्टडी आ मुखे दिनी वने छो के मुझे जो को बार आ जो को माइनर आ जे वट आए उते प्रॉपर्ली ट्रीटेड नथो थे पियो
0: ओके
1: ठीक आ उन के उन उन बार के न वो नरिशमेंट आ न उन बार के वो एजुकेशन आ न उन बार के वो स्कूलिंग आ न उन बार के वो जो को माहौल मिले तो एनवायरमेंट मिले तो जे में हो सुठे तरीके से बा अखलाक एकड़ो मानु एकड़ो बेहतरीन सिटीजन थी सके तो उन सिचुएशन में 25 दाखिल कंदा के कोर्ट कस्टडी छा कंदो चाहे अगर पेरेंट आ मदर आ सपोज वह जिंदगी नथी ॾेई सघे त उहा वठी करे पीउ जे हवाले करे वेंदा आहिनि अगर पीउ आहे उहा ज़िंदगी नथो ॾेई सघे त उहा माउ जे हवाले करे सेक्शन 25 इज़ अबाउट दैट हाणे डिस्चार्ज तव्हां पुछो था डिस्चार्ज ऐं सीज़ेशन खे मां हिकड़ी कैटेगरी में रखंदुमि
0: ठीकु आहे
1: डिस्चार्ज जो मतिलबु आहे माना पंहिंजे कम खां फारिग थी वञणु सीसेशन में इहो हूंदो आहे त अगरि सपोज कोई बि कोर्ट कंहिंखे बि पंहिंजो गार्डियन अपॉइंट करे थी ॿार जो त अगरि उहे कंडीशन फुलफिल थी थी वञनि त ऑटोमेटिक ई जेकी कंडीशन आहे गार्डियनशिप जी उहा टर्मिनेट थी थी वञे
0: ठीकु आहे
1: जंहिंमें अगरि मिसाल ॿार आहे बालिग आहे ॿार आहे बालिग थी वियो ठीकु आहे गार्डियन आहे उहो नेचुरल डेथ करे गुज़ारे वियो या माइनर आहे वीचारो 18 ताईं पुॻो ई न डेथ करे वियो ठीकु आहे त इन सिचुएशन में छा थींदो आहे त असां हिनखे डिस्चार्ज चवंदा
0: आहियूं
1: ॿियो इहो डिस्चार्ज जो मक़सदु इहो हूंदो आहे जेके असां सीज़ेशन चवंदा आहियूं डिस्चार्ज ऐं सीज़ेशन टर्म्स अलॻि अलॻि लिखियल आहिनि गार्डियंस में पर तत खणंदासीं समरी खणंदासीं तव्हांखे साॻी मिलंदी ॿियो कोर्ट डिसाइड करे की जेको गार्डियन आहे उहो गार्डियन उन क्वालिफिकेशन से बीठो या न बीठो अगरि हुन क्वालिफिकेशन से बीठो आहे त हुनखे कंटिन्यू रखंदे अगरि उन जेके असां प्रीवियसली क्वालिफिकेशन ॿुधायूं अगरि उन खां डाइवर्ट थी वियो आहे त ऑटोमेटिक ई उन जी गार्डियनशिप खे डिस्चार्ज करे दे विल अपॉइंट द न्यू गार्डियंस सो सीज़ेशन एंड डिस्चार्ज आर द सेम थिंग बाक़ी रही तव्हांजी रिमूवल ऑफ द गार्डियन रिमूवल ऑफ गार्डियन में ईअं सम्झो के माइनर आहे उन ते ज़ुल्म कयो थो वञे माइनर कंप्लेन करे थो मूंखे पढ़ाई जी जॻह ते मूंखां जेको आहे न ॿिया ग़लति कम था वता वञनि ठीकु आहे सपोज़ अगरि असां पंहिंजे माहौल जी रियलिटी अगरि असां माहौल में थोरो ॻाल्हायूं हूंदो न मूंखे नथो लॻे ईअं न हूंदो अलाह करे ईअं न हुजे कुझु माण्हू छा कंदा आहिनि ॿार जी कस्टडी वठी करे उन मां जेको बि हुननि खे मिलंदो आहे प्रॉपर्टी जे पॉइंट ऑफ व्यू चाहे उहो मोबल हुजे या मोबल हुजे कुझु बि मिलंदो आहे उहो सेल्फ इंट्रेस्ट जे करे ॿार खे अडॉप्ट करे छॾंदा पोइ बाद में उन ॿार खे माना ग़लति तरीक़े सां इस्तेमालु करणु या अॻिते सेल आउट करे छॾणु या हुनखे
0: बॉलीवुड जी हिकड़ी मूवी बि असां ॾिठी आहे ईअं आहे त प्रॉपर्टी जी वजह सां जेको आहे त हुनजी केयर कई वेंदी
1: आहे
0: मतिलबु एजुकेशन बि न ॾिनी वेंदी आहे जेको आहे त आफ्टर 18 हुन खां जीवन सॼी प्रॉपर्टी पंहिंजे नाले
1: माना मिसाल आहे न त असल में असांजी जेकी मूवीज़ उहे बि रियल लाइफ खां इंस्पायर्ड कुझु माण्हू छा कंदा आहिनि हुनजी प्रॉपर्टी ते असां हुनखे चवंदो सेल्फ इंट्रेस्ट ॿार खे पालींदा त आहिनि पर पर्पज़ छा हूंदो आहे त जीअं हे वॾो थिए त असां हुनखे एतिरो पाले रखूं जीअं वॾो 18 जो थिए त असां सॼी प्रॉपर्टी पंहिंजे नाले ते कराए छॾूं सो अगरि उन कंडीशन ते अगरि कोर्ट अगरि कंसीडर कंदी त अगरि जेकी गार्डियन अपॉइंट थियल आहे उन मेनर ऐं उन प्रिस्क्रिप्शन से नाहे बीठो जेके प्रिस्क्राइब थियल आहिनि ठीकु आहे उन प्रिस्क्राइब्ड लिस्ट में नाहे उन प्रिस्क्राइब मेनर में न आहे त कोर्ट छा कंदी हुनखे रिमूव करे छॾी टर्मिनेट करे छॾी हुन जॻह ते ॿिए कंहिंखे गाॾी अपॉइंट कंदी
0: ठीकु आहे सो सर प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो आहे तमामु सुठी असां गुफ़्तगू कईसीं अबाउट द टॉपिक गाडियन सो लास्ट में तव्हां कहिड़ो असांजे जेका व्यूअर्स खे पैगाम ॾियणु चाहींदा अबाउट दिस एक्ट एंड एज़ वेल एज़ जेके जिते बि तव्हां सम्झो पिया जीअं तव्हां ई पंहिंजी गुफ़्तगू में इहा ॻाल्हि कई त माइनर्स खे जेको आहे सही तरह ट्रीट न कयो वेंदो आहे कुझु कस्टोडियन पारां हुननि खे कहिड़ो तव्हां मैसेज ॾियणु चाहींदा
1: मुंहिंजो मैसेज सिर्फ़ पेरेंट्स खे इहो हूंदो की ख़ुदा कॾहिं बि घर में मामलात अहिड़ा थियनि त ॻाल्हियुनि खे मसलनि खे ठाहियो जहिड़ा थींदा रहंदा आहिनि हर घर में जहिड़ा थींदा आहिनि पर हर जहिड़े जो सल्यूशन कोर्ट न आहे असां त वकील आहियूं ठीकु आहे असां हिन सिचुएशन खे ॾिसूं था पिया इवन एज़ अ वकील एज़ अ जज असांजी इहा ई मेन जेको पर्पज़ हूंदो आहे की पाण में ठही वञनि जॾहिं बि कंहिं कोर्ट में को केस ईंदो आहे त आई एम द सोल विटनेस ऑफ दैट थिंग के जज हिकड़ा हूंदा न 100% मां ॾिठो आहे जजिस खे उहो 100 न 1000% जेको आहे एफर्ट्स ॾींदा आहिनि त हे पेर ठही वञे पाण हे जोड़ो ठही वञे लास्ट खां लास्ट जज पेन घुमाइण खां अॻु में डाइवोर्स तलाक कुल्हाड़ माना डिक्लेयर करण खां अॻु में मां जजिस खे ॾिठो आहे के एॾो त राज़ी कंदा आहिनि माना अलाह जी हदीस सां रसूल जी हदीस सां अलाह जूं आयतूं वलियुनि जा मिसाल आइमा जा मिसाल दुनिया में थींदड़ मुश्किलातूं पेरेंट्स जे ॿारनि जे मथां ईंदड़ मुश्किलातूं जज न वेठो हूंदो आहे ईअं लॻंदो आहे ॼण घर जो भाती वेठो आहे
0: सही
1: घर जो वॾो वेठो आहे एॾो कोशिश कंदो आहे पाण में ठही वञनि डिसीशन कहिड़ो बि अचे उहो असां पाण में न ठहंदासीं उन खां पोइ बि जज छा कंदा आहिनि बाबा ठही अचो
0: सही
1: तारीख़ मिली वेंदी आहे वरी तारीख़ मिलंदी आहे मां पाण पंहिंजी अखियुनि सां ऐं पंहिंसां पाण कंहिं फैसले में टे टे तारीख़ूं बि वरितियूं आहिनि ॿ ॿ तारीख़ूं वरितियूं आहिनि जजिस इन करे चवंदा आहिनि ठही अचो जॾहिं ॾिसंदा सिचुएशन वर्स्ट आहे नथा ठहनि देन जजिस छा कंदा आहिनि मजबूर थी करे अनाउंसमेंट प्रोनाउंस करे
0: छॾंदा
1: डिसीशन बहरहाल मुंहिंजो चवण जो मक़सदु आहे की अगरि को ॿार सपोज छोके रसूल पाक बि फरमायो आहे न के अगरि यतीम जी कोई परवरिश कंदो हुनजी सार संभाल लहंदो त क़यामत में मूंसां ईअं बीठो हूंदो जीअं ॿ आङरियूं इशारो करे ॿ आङरियूं हिननि में को दरमियानी गैप न आहे ईअं क़यामत में मूंसां गॾु बीठो हूंदो अगरि तव्हांखे कंहिं बि ॿार जी गार्डियन या कंहिं बि ॿार जी कस्टडी मिले थी उनखे ईअं पालियो जे पंहिंजो बचो सम्झी करे
0: बिल्कुलु एग्ज़ेक्टली
1: हुनजी प्रॉपर्टी ते या उनजी कंहिं बि शइ ते तव्हांजी नज़र
0: न हुजे
1: कंहिं यतीम खे पालण कंहिं यतीम जी परवरिश करणु ऐं अॻिते लिख बहितरीन इंसान थो थी वञे इहो सदिका जारी आहे इन खां वधीक इंसान लाइ छा खपे जेको रसूल सां क़यामत वारे ॾींहुं खुले

0: ऐं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो आबनाह हुर्मुज़ खे जल्द अमरीकी इलाइक़ो करार ॾियण जो ऐलान। न्यूयॉर्क में तकरीब खे ख़िताब कंदे अमरीकी सदर चयो त ईरान ते मुआशी दबाव विझी जंग ख़तम करण ते मजबूर कंदासीं। जल्द आबनाह हुर्मुज़ खे अमरीकी इलाइक़ो करार ॾियण जो बि ऐलान कंदुसि। व्हाइट हाउस आबनाह हुर्मुज़ बाबति सदर ट्रंप जे बयान खे मज़ाक करार ॾेई छॾियो।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में ॾे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
2: काला सारियुनि जी जान, हारीअ जी शान, जदीद फार्मूला सां तयार करे सुंडियुनि ते सघारो वार, वसी ऐं देरपा असर। स्टालिन जो गाला सुंडियुनि जो दुश्मन, गाला जी बदौलत थे सुंडियुनि जो मुकमिल ख़ात्मो। फसल रहे देर ताईं महफ़ूज़ ऐं मिले पैदावार वधीक। लेबल ते ॾिनल हिदायतुनि जे मुताबिक़ इस्तेमाल करियो। क़रीबी स्टालिन ज़रिए मर्कज़ तां हाणे ई हासिल करियो।

0: साहिबान जो लामा पैदावार वधाए फसल।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पियारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पियारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त इन जो आसान जवाबु इहो आहे, हीउ ॿार बि असां वटि अल्लाह ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइण लाज़मी आहे।
4: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
5: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
8: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
9: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल,
6: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
10: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
10: 03125257866।
6: जी हा, 2315525786।
10: जीएफएम रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: It's 8:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज. मातली के हो तो आवाज भी मातली की है.
4: सुनते रहो GAFM 90.4.

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।

0: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
0: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: खुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
3: खुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM
6: 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: कुछ जो शिकायतें हम तक पहुंची हैं उसका भी मुझे बड़ा अफसोस है। उम्मीद नहीं थी कि पीपुल्स पार्टी की तरफ से जिनकी हुकूमत थी, जिनका वजीर आजम था, उनकी तरफ से कोई हमें शिकायत का मौका मिले। मुखालफीन के साथ अच्छा सलूक किया है। सियासत में मुखालफतें होती हैं लेकिन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहां दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। तो ये मुनासिब नहीं है। आजाद कश्मीर का माहौल हमेशा बहुत अच्छा रहा है और उसके अंदर इस तरह के जरासीम मगर दाखिल हो जाए तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। मैं ये समझता हूं कि ये हारना जीतना तो किस्मत की बात होती है और फिर उनकी शिकायतें जो हैं वो मेरे ख्याल है कि किसी वक्त बैठ के जरूर सुनेंगे।
2: सियासी मुखालफत दुश्मनी में तब्दील न थियण घुर्जे। कुछ शिकायतूं असां ताईं पहुतियूं जंहिं ते अफ़सोस थियो आहे। उमेद न हुई त पीपल्स पार्टी तरफ़ा को शिकायत जो मौको मिलंदो। शहबाज शरीफ जी महिनत रंग ॾेखारे रही आहे, मुल्क तरक़ी करे रहियो आहे। मरीअ में पार्टी इजलास खे ख़िताब कंदे नवाज़ शरीफ चयो त आज़ाद कश्मीर चूंडुनि जे ॿिनि मरहलनि में नून लीग कामयाबी हासिल कई आहे। जहिड़ी तरह पंजाब तब्दील थी रहियो आहे, अहिड़ीअ तरह आज़ाद कश्मीर खे बि तब्दील थियणु घुर्जे। नून लीग डिलीवर न कयो त हितां जो अवाम नाराज़ थींदो। خیبر پختونخوا جے وڈے وزیر جو وفاقی مالیاتی منتقلی میں 6.40 ارب روپیہ دین کا انکار۔ سہیل آفریدی چیو ہے تو وفاقی حکومت بجٹ کا پہریاں بین صوبن جیاں کے پی کا بے وادو رقم جی گھر کئی ہوئی۔ انن وادو رقم جی فراہمی کے پی ٹی آئی بانی سا ملاقات سندس اجازت سا مشروط کیا ہو۔ ضم تھل ضلع کے 11 قومی مالیاتی کمیشن میں آئینی جائز حصہ دین بھی شرط ہو۔ بانی سا ملاقات نہ کرنے خیبر پختونخوا وادو رقم کی مفاہمتی یاداشت صحیح نہ کئی۔

0: आपके बच्चों का हेल्थी फ्यूचर।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842
4: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
4: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
1: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
2: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
6: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
6: 03125252786
2: जी हाँ 2131525786
6: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

बुलेटिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो, डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो, त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहे।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हय में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है और वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।